0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: मेरे नाल नाल जपो बस
1: प्रीतम के
0: सारे बोलो और सुनो मी देखना आज तुसी बोल के बाणी नू नाल अपने कन्ना नाल सुनो मैं की कह रहा वो बाणी अंदर दाखल हुंदी कि नहीं हुंदी देखना मेरा एक अर्ज है मेरी बेनती

शब्द वरते हैं महाराज ने। सखी कौन है? सड़िया रूहा। असी सारे स्त्री हैं, जग में एको पुरख है, बाकी सगले नार। पानी दे विच जिथे सखी अखर आंदा, मित्र आंदा, दोस्त आंदा, सखी का मतलब है असी सारिया रूहां। रूहां की गल्लां हो रही ने, ये रूहां नूं जाके जो मिलेगा, चंगिया रूहां दे विच जाके बैठेगा, उत्थे जाके की करना, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, उत्थे गुण गा मेरे परमात्मा दे, रब दे गुण गाओ। जो रूहां ना रूहां मिलन, उत्थे कख ना बोलो, सिर्फ रब दीआं गल्लां करो। जे नहीं आउंदियां कन्न करके सुन लवो, जिहड़े करदे ने उहनां दीआं गल्लां सुन के आ जावो, उहदे विच वी भला हो जाएगा सर।

दर्शना दे नाल मन शांत होएगा, शरीर शांत होएगा और कुछ नहीं। हे प्रभु दर्शन दवो, दर्शन दवो प्रभु, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिल पकड़े चातर की न्याई, रिखा ना उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जी। तेरे दर्शना तो बिना गुजारा नहीं होना, दर्शन दवो गल ही तां बननी, ते दर्शन कदी ना कदी दवेगा। अज भुख पैदा करांगे कल वो भुख पूरी होवेगी, साचे नाम की लगे भुख। फिर महाराज जी कहते ने साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाई। एहो जा नाम है बस एक बार वस गया सारियां भुखा शांत हो गई, सब भुखा भी मिट गई।

हूँ कीर्तन गा रहे हो तो सुन रहे हो अज जाना जो तुम घर च ना रहमत वेखना यो रहमत थोड़िया थोड़िया कट्ठिया होके बड़ा सुख दिंदियां ने बड़ी कृपा दे खुशियां मिलदियां ने इन्हां रहमतां तों भोरा भोरा रहमत कट्ठी की जाती है भोरा भोरा पानी तिल तिल तिल तिल कर करके एडे एडे वे भाग हो जाते हैं वे भागी बंदा बन जाता गूंद बूंद ना समुद्र

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
5: एफएम। हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

सच्चे पातशाह गुरु नानक घर की बाणी है, नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाओ, गुरु के शब्द सलाह, और गुरु के शब्द पढ़िया करो, गुरु की शब्द गल करिया करो, गुरु का नाम जपया करो, बस नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाइए, की समझाइए, गुरु का शब्द सलाह।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: राम राम दोस्त, सलाम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं। ये जो बातें हम कर पा रहे होते हैं, एक संदेश दूसरी जगह हम पहुंचा पा रहे होते हैं, अखबारों के जरिए खबरों को हम पढ़ पा रहे होते हैं, टीवी के जरिए न्यूज को हम देख पा रहे होते हैं, हमारे आसपास क्या खास हो रहा है, ये सब हो रहा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से ये संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहे होते हैं। तो इस चौथे स्तंभ को, लोकतंत्र के स्तंभ को हम दिल से सलाम करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आज इसका मैं जिक्र कर रहा हूं तो दो बड़ी खूबसूरत हस्ती हमारे साथ जुड़ रही हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहते हैं इसी विषय पर, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने इनवाइट किया है। भारत न्यूज 360 टीवी से आप हैं और इनका जो परिचय मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हैं स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली NCR और इंडियन नेशनल जर्नलिस्ट फेडरेशन से आप जुड़े हुए हैं एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी। तो सर, सुनो शादा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: आप परिचय में अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहूंगा, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही है, आपने परिचय सुना।
0: अनन्या जी आपको देख रही थी, मुझे भी देख रही थी। चलिए, दूसरी हस्ती हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका भी मैं परिचय आपको देना चाहूंगा। मेरे साथ हैं आप भारत न्यूज 360 टीवी से, आप हैं ब्यूरो चीफ एंड ऑपरेशन हेड अनन्या ठाकुर। आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया गगन जी।
0: लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हरफन मौला हैं, आप पेशे से एक एंकर भी हैं, बहुत सारी भूमिकाओं के साथ अपनी जिम्मेदारियों को अपने चैनल के साथ आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं। तो सर, आप पहले मुझे बताइए कि सुनो शारदा के इस प्रांगण में रेडियो FM में आकर मुझसे मिलकर आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन।
0: थैंक यू।
1: बहुत अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया।
0: ये तो आपका प्यार है और जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, हम तो एक ही बिरादरी के हो गए ना, वैसे तो बिरादरी हम तीनों की एक ही है, लेकिन एंकर कुछ तारीफ तो कर ही सकते
2: हैं। अपनापन आता है जब आप अपनी बिरादरी से मिलते हैं, और आप डेफिनेटली, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
0: चलिए, बहुत खूबसूरत, यानी कि औपचारिकताओं से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास क्या खास है, यानी कि पत्रकारिता के बारे में हम बात करेंगे। वर्तमान पत्रकारिता और पुराने समय की जो एक अंतर है, हम क्या महसूस करते हैं उसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे आजकल जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ माइक लोग लेकर निकल जाते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ABCD उनको पता नहीं है, बहुत सारी बातें डिटेल में होंगी हमारे दो खास मेहमानों से। तो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समुदाय की बातें करें, अपनी बातें करें, हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उन बातों को हम जन जन तक पहुंचाएं। जी हां, आज एक विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, वर्तमान पत्रकारिता के बारे में जानेंगे और प्राचीन समय में इसकी क्या रूपरेखा थी उसके बारे में जानने समझने के लिए मैंने स्टूडियो में दो खास मेहमान को इनवाइट किया है। भारत न्यूज 360 टीवी से आप है मेरे साथ एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। सवाल मेरा ये है और मैं समझना आपसे चाहूंगा कि आप क्या महसूस करते हैं अगर हम देखें कि आज की जो जर्नलिज्म है जिसको हम आम भाषा में कहते हैं पत्रकारिता और पुराने समय की पत्रकारिता में क्या आप अंतर महसूस करते हैं?
1: गगन जी, ये जो आपने प्रश्न किया ये बहुत ही खूबसूरत भी है और बड़ा विवादित प्रश्न है, जो कि जैसे हम पत्रकारिता की बात करें कि उसको आपको पहले जाना पड़ेगा संविधान में। आप उसमें देखेंगे कि पत्रकार और पत्रकारिता को इस तरीके से रखा गया कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहते हुए अपनी बातों को कह सकें, अपनी बातों को रख सकें। शायद यही एक रीज़न है कि संविधान में या उस पूरे के पूरे तंत्र में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं रखा गया कि क्या एक पत्रकार की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या जो है किस तरीके से पत्रकारिता, मतलब कि आप अगर किसी चीज़ को किसी खबर को पहुंचा पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, तो आप और रेगुलर आप काम कर रहे हैं तो आप ऐसे पत्रकार हैं
0: जी।
1: अब पहले की पत्रकारिता की बात करें तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी, चूँकि रिसोर्स नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। और आज की पत्रकारिता की बात करेंगे तो आज हम AI के युग में हैं, चैट GPT से लेकर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके लिए रिसर्च करना, बहुत सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी, इसी चीज़ों ने जो है बहुत सारे चैलेंजेस को भी जन्म दिया। अब हम बात करें कि ऑथेंटिकेशन किसको कहते हैं, ऑथेंटिक पत्रकार किसको कहते हैं।
0: मैं इसी बात पर आता, बिल्कुल इसी बात को मैं आपसे जानना समझना चाह रहा था कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ पहले लोग काम किया करते थे, आज वो चीज कहीं ना कहीं गुम होती हुई नजर आ रही है और जिसकी वजह से वो सम्मान, आप यकीन मानिए, आप मेरी बात से इत्तफाक रखेंगे, कहीं ना कहीं हम खोते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी फिल्मों में हम देखा करते थे एक पत्रकार जब जाया करता था तो बड़े बड़े अधिकारी अपनी सीट छोड़ दिया करते थे उस पत्रकार के लिए, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ अपनी कलम के जरिए लोगों को जगाने का काम करता था। आज चंद रुपयों के लिए हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ चीजें गलत हो रही हैं हमारे समाज में। तो इसके बारे में जो आपने कहा ऑथेंटिसिटी के बारे में, ईमानदारी के बारे में, इसके बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा। मैं अनन्य आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, सवाल मेरा वही है, आप क्या सोचती हैं, आपका नजरिया क्या है?
2: सर जैसे कि बताया संदीप जी ने कि पहले काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थे, उतने साधन उपलब्ध नहीं थे हमारे पास में, तो किसी भी एक स्टोरी करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता था, प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। बस आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी, हम आसानी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें ईजिली अवेलेबल भी हो जाती हैं। तो अभी स्किल्स तो हमें डेफिनेटली है कि AI के जरिए हमें मेहनत कम करनी पड़ रही है, बट हाँ चैलेंजेस अभी भी वही है कि अगर आपको ईमानदारी के साथ में पत्रकारिता करनी है तो उस पे आपको बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है।
0: राइट, जो बात आपने मुझे बताई सर ने भी वही बात की, अगर मैं इसका समराइज करूं, निष्कर्ष निकालूं, तो जो पैरामीटर्स हैं, जो ऑथेंटिसिटी है, जो एक ईमानदारी है, उसका एक मापदंड क्या है, वो क्या क्या नियम कायदे कानून है जिसके तहत एक पत्रकार आगे बढ़ सकता है, अपने समाज में जन चेतना ला सकता है, और अगर वो चीजें नहीं है तो निश्चित तौर पर उसके कलम से निकले हुए शब्द बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। बात हम कर रहे हैं बिंदास सुबह में, बिंदास बातें हो रही है, बिंदास बोल हो रहे हैं, और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं विषय बड़े खूबसूरत है। और 360 टीवी के आप एडिटर इन चीफ, ये हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में आप हैं संदीप तिवारी जी और अनन्या ठाकुर जो कि ऑपरेशन हेड हैं इसी चैनल में। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: तो सर मैं आपको रोका था उस वक्त क्योंकि मैं उस सवाल का जवाब अब आपसे जानना चाह रहा था। ऑथेंटिसिटी की आप बात कर रहे थे, अनन्या उसके मापदंडों के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे।
2: देखिए गगन जी, अगर हम पत्रकार और पत्रकारिता की बात करें, मेजर अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या है
0: जी,
2: पत्रकार और पत्रकारिता जो है जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि समाज में या जो है तंत्र में गलत हो रहा हो तो उस पर क्वेश्चन करें, सही हो रहा हो तो उसकी रिपोर्टिंग करें, लेकिन उसको हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना कंपलसरी होता है। और रही ऑथेंटिसिटी की बात, तो उसके बहुत सारे जो है मापदंड हैं और बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम बात करें कि अगर गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज करती है, तो अगर गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज, ध्यान सुनिएगा गगन जी, अगर गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज करती है तो क्या गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं? जहां से जिस पेपर में या जिस सर्टिफिकेट से आपको पत्रकार, मुझे अगर पत्रकार कहने का सर्टिफिकेशन अगर सरकार देगी तो सरकार में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ या कैसे बोल सकता हूँ? इसीलिए संविधान में ये कोई प्रावधान डाला ही नहीं गया, आप ये कह सकते हैं। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर होती है संविधान में, कोई भी चीज़ दी गई, तो उसके मिसयूजेस भी बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि समय समय पर उसका अमेंडमेंट करना चाहिए, अमेंडमेंट करके इस चीज़ को। अब जैसे मैं बड़ी बात बताऊं कि डिजिटल पॉलिसी की बात करें हम
0: जी,
2: पत्रकारों की, पत्रकारिता के या पत्रकार की डिजिटल पॉलिसी है, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए हुए थे उसी टाइम पर उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की। और ये बड़े कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि आज इतने सालों बाद भी डिजिटल मीडिया का आज तक कोई भी रूपरेखा या कोई भी चीज़ ऑथेंटिकेशन आज तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई
0: जी। ठीक है,
2: आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्या प्रोसेस है, क्या है, आज तक कोई डिफाइन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को त्वरिता से काम करने की ज़रूरत है।
0: बहुत अच्छा।
2: और रही बात ईमानदारी की सर, तो ये तो एक प्रत्येक विषय मतलब व्यक्ति विशेष की वो है कि उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। रही बात बेईमानी की, तो बेईमान पत्रकार पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, लेकिन उससे पूरी की पूरी पत्रकार बिरादरी को नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। आपको सही चीज़ों पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आज की अगर हम बात करें गगन जी, एक बहुत चीज़ देखने को मिलती है कि हम कहीं ना कहीं पत्रकार ना होकर, पत्रकारिता ना होकर, हम कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट करने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज की डेट में क्या हो गई है, आप कुछ आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं और बोल के उसको हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी बाइट लेके चले जा रहे हैं, जबकि हमारा कर्तव्य क्या बनता था
0: सवाल
2: कि आप बोल रहे हैं तो उस पर मैं क्वेश्चनिंग करूं, काउंटर क्वेश्चन करूं, मैं पूछूंगा ऐसा क्यों हुआ जी,
0: जी।
2: हम क्यों नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब जो आपने कह दिया उसी को हमने दोबारा एक अपने कैमरे पर ले जाकर हमने दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत वो है कि उस पे हमें जो है काउंटर करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। जब जब क्वेश्चंस होते हैं और वो कहीं निगेटिव नहीं होता, आप क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि वो आपका जो भी क्वेश्चन है वो सत्ता पे बैठे शिखर पे जो लोग हैं उन तक पहुंचे, और कहीं कुछ कमियां है सिस्टम में तो उसको ठीक की जाए।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और इस बात को मैं जानना समझना चाह रहा था, हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी समझना चाह रहे थे कि आपका इस पर क्या टेक है, आप क्या कहना चाहते हैं। आपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस की बातें की हैं जिसके बारे में मैं आपसे ज़रूर जानूंगा, और साथ ही साथ अनन्या आप क्या इस पर कहना चाहती हैं, आपसे भी जो आपने मापदंड का जिक्र किया वो बातें मैं आपसे ज़रूर करूंगा, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। Don't go anywhere. Stay tuned. All you through Shada 90.8 FM with me, मेरे यानी गगन के साथ आज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र के महारत हासिल हैं, और आप भारत न्यूज 360 टीवी चैनल से आप आते हैं। आप हैं संदीप तिवारी जी जो कि एडिटर इन चीफ हैं, और साथ ही साथ हैं अनन्या ठाकुर। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे रनिंग गगन के साथ बिंदास। सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें हो रही है और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अनन्या जी जो कि भारत न्यूज 360 टीवी से आप आती हैं, ऑपरेशन हेड आप करती हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी। तो एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: अनन्या। मैं आपसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जो आप बात कर रहे थे कुछ मापदंडों के बारे में बात कर रहे थे, कुछ पैरामीटर्स के बारे में आप बात कर रहे थे पत्रकारिता के बारे में, तो सर ने जो बातें रखी हैं उसके अलावा अगर आप कुछ एड ऑन करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं तो आप प्लीज हमें बताइए।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि आज के युवाओं में आप देख रहे हैं कि जोश तो बहुत देखने को मिलता है, वो पत्रकारिता करना भी चाहते हैं सही तरीके से। तो अगर अभी करंट के आपको कुछ केसेस याद हो पत्रकारों पे, उत्तराखंड के राजू हो गए या छत्तीसगढ़ के हो गए, तो उन्होंने ईमानदारी से पत्रकारिता करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छे रिपोर्टिंग भी की और भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर भी किया। तो एंड ऑफ लास्ट आपको उस पे न्यूज भी मिली होगी
0: जी,
1: कि कहीं ना कहीं उनका मर्डर हुआ, एक्सीडेंटल दिखाया गया। तो ये चीजें काफी इफेक्ट भी करती हैं हमारे यूथ को, खासकर हाँ मेंटली डिस्टर्बेंस करती हैं। तो अगर वो चाहते भी हैं ईमानदार पत्रकारिता करना, तो कहीं ना कहीं वो जो अभी आज का टाइम चल रहा है कि जो अभी सिस्टम में चल रहा है आप उसी को दिखाइए, तो कहीं ना कहीं यूथ इससे घबरा भी रहा है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, जब तक आप स्टेबल नहीं है तब तक आप खुल के कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। आप जो सामने वाला बोल रहा है आपको सुनना है, वही आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप स्वच्छंद पत्रकारिता करते हैं तो उसके लिए आपको या तो बड़े लेवल पे आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, आपके बैक बोन्स बहुत मजबूत होने चाहिए, देन उसके बाद आप किसी स्टैंड के लिए आप खड़े हो सकते हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आज के यूथ के लिए, खासकर क्योंकि वो बहुत जेंजीज का टाइम चल रहा है, तो जेंजीज को एक पेशेंस लेवल भी नहीं है और वो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं जो उसके साथ में। जैसे अभी आपने देखा जेंजीज ने एक नेपाल में
0: क्रांति
1: ला दी,
0: तो राइट
1: सेम चीज यहाँ पे देखने को।
0: मैं आपकी बात को समझ गया। अनन्या ने एक दूसरी तरफ इशारा हमें कर दिया है और वही वाली बात है कि पत्रकार जब आप हैं तो बातों में से बातें निकलेंगी ही। इन्होंने इशारा कर दिया कि जिस तरीके से उत्तराखंड का एक एग्जांपल इन्होंने हमारे सामने रखा, तो ऐसा क्यों होता है कि वो एक पत्रकार अकेला पड़ जाता है, उसकी आवाज़ को बुलंद नहीं किया जाता है, सब साथ मिलकर नहीं चल रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एकला चलो रे और उसके बाद वो चीज़ें ठंडे बस्ते में पड़ जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं डर का माहौल हो जाता है कि अगर मैं इस तरीके की पत्रकारिता करूँगा और बेबाक बोलूँगा, सच दिखाऊँगा, तो हो सकता है कि उसको डर रहेगा कि मेरे साथ नुकसान हो सकता है। उसे डर इस बात का भी रहेगा कि मेरे पीछे कोई है नहीं, यानी कि वो बिरादरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पत्रकार बंद। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से
2: गगन जी? ये तो होता है। देखिए, आप जब भी जो है रिपोर्टिंग करेंगे, स्पेशली जो है करप्शन के खिलाफ या क्राइम के खिलाफ, तो खतरा तो आप पे रहेगा सर
0: जी।
2: यही तो मैं कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इस चीज की चेंजिंग्स होनी चाहिए। आप ये समझिए जो है कि आप जो ये पत्रकार या जो है जो मीडिया सेक्शन है वो एक सेटअप, बहुत महंगा सेटअप है, करना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
2: ये बहुत आसान काम नहीं होता। आप उसके एक्सपेंसेस को मीट आउट करना, अपनी टीम के एक्सपेंसेस को मीट आउट करना, तो कहीं ना कहीं जो है आप इसको किस तरीके से आप करेंगे। और दूसरी बात क्या होती है कि जैसे कुछ कंट्रीज़ में होता है कि एक फ़ंड होता है जिस तरह से जिससे जो है मीडिया हाउसेस जो चलते हैं वो उसको इंडिपेंडेंटली दिया जाता है। अभी क्या है कि जैसे एग्जांपल समझिए कि किसी भी मीडिया हाउसेस की बात करें, किसी स्पेसिफिक का नाम हम नहीं कहेंगे, किसी को भी नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि पावर के खिलाफ बोलना या कहना जो है। हाँ, लोग काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, सब कोई काम करते हैं, लेकिन देखिए जब भी आप कभी भी किसी क्रिमिनल का या किसी पे वर्किंग करेंगे तो वो अटैक करेगा आपके साथ, हो सकता है। तो ये देखिए एक क्रिमिनल माइंडसेट है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए पत्रकारिता करना, जब आप इस फील्ड में आते हैं तो ये साथ में लेकर आते हैं। जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं कि आप क्राइम के क्रिमिनल के खिलाफ बोलेंगे तो आप ये कुछ करेंगे, तो हो सकता है कि गोली आपके नाम पर हो। तो देखिए इसीलिए एक बात और बताऊं गगन जी, इसीलिए आपको एक अलग स्थान भी मिला है। आप एज अ जर्नलिस्ट हैं तो आप जब खड़े होते हैं तो आपका एक अलग सम्मान होता है, एक अलग प्रेशर फील होता है, सिस्टम पे खड़े होते हैं बोलते हैं, तो उस जगह को पाने

0: संगठन कुछ ना कुछ इस पर काम करते हैं, जो पत्रकारों के संगठन होते हैं वो उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। और ये लगभग देखा गया है कि अगर पत्रकारों पे कभी अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो उस पर जो है एक्शन होता है। फिर ये बात की बात है, उसके जाने के बाद होता है, उनके जाने के बाद ये होता है। तो इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेकर, कुछ दे चाहे नहीं दे, आप जो है पत्रकारों के प्रोटेक्शन में आप उस पर कुछ करें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर कि भाई आपको मतलब चाहे सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, वेपन्स प्रोवाइड कीजिए, जैसा भी कीजिए। और इससे देखिए बात वहीं आके फिर फंस जाएगी कि गवर्नमेंट कुछ करेगी तो सबके लिए करेगी, और सबके लिए करेगी तो पहली बात तो यही डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन एक्चुअल पत्रकार और कौन नहीं पत्रकार। अब गवर्नमेंट अगर एक्चुअल पत्रकार की कोई मापदंड लेकर आए तो यहीं से एक आवाज उठेगी कि आप अगर मुझे सर्टिफाइड करोगे तो आपके खिलाफ मैं बोलूं कैसे। तो ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, एक इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग।
1: कुछ लोग तो कैसे निकाले, प्राप्त पत्रकार तो होते हैं सर।
0: अब आप बताएं सर ना कि मान्यता प्राप्त, वर्ड सुनिए, मान्यता प्राप्त कौन मान्यता दे रहा है?
1: आई थिंक वही जो आप कह रहे हैं,
0: गवर्नमेंट दे रहा है। तो सर एक बात बताइए, अगर मान्यता गवर्नमेंट दे रही है, आपने सर आज तक देखा है कोई सरकारी अधिकारी अपने विभाग के बारे में गलत स्टेटमेंट दे रहा हो?
1: ये बात आप
0: कैसे दे देगा?
1: सही बात।
0: सैलरी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसके खिलाफ वो कैसे बोल सकता है?
1: गवर्नमेंट तो, मुलाजिम है वो।
0: तो अगर आप गवर्नमेंट, आप मुझे जो है मान्यता दे रहे हैं, मान्यता मीन्स कि आप मान्यता दे रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं हूँ, तो फिर अगर आपने मुझे मान्यता दे दी तो फिर आप पे मैं क्वेश्चन मार्क कैसे लगा सकता हूँ? और मेरा सबसे परम कर्तव्य यही है कि मैं आपके सही एंगल को दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन गलत एंगल को दिखाना बहुत जरूरी है, तभी उसमें चेंजेस आएंगे।
1: राइट, बहुत अच्छी बात आपने कही। सो लिसनर्स, कहने का आशय यही है कि आप जब इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कमर कस कर आप आइए और अच्छा लिखिए, अच्छा बोलिए, और कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। और निश्चित तौर पर सुनवाई होती है, बात निकलेगी तो दूर तलक ज़रूर जाती है, उसका असर भी होता है। वर्तमान समय में पत्रकारिता के जो चेहरे हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदलती हुई नज़र आ रही है, ChatGPT हमारे सामने है, AI हमारे सामने है, नए नए लोग आ रहे हैं अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं। कुछ इस तरीके के सवालों के जो दौर है वो ज़रूर हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे ज़रूर जानेंगे, समझेंगे कि क्या करें क्या ना करें इस समय। तो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक पर मैं बात कर रहा था अपने खास मेहमानों से कि बातचीत इतनी ज्यादा अच्छी हो रही है कि समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। स्टूडियो में खास मेहमान हैं, आप हैं भारत न्यूज 360 टीवी से एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी, और साथ ही साथ हैं अनन्या ठाकुर जो कि ब्यूरो चीफ और ऑपरेशन हेड है इसी चैनल से, यानी कि भारत न्यूज 360 टीवी से। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: बहुत बहुत
2: धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा विषय है पत्रकारिता के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके सकारात्मक पहलू के बारे में। कुछ चीजें गलत हो रही हैं वो भी हम जान रहे हैं समझ रहे हैं, जैसे कि आपने ईमानदारी की बात की, आपने बात की कि कुछ एक मापदंड होना चाहिए कि कौन पत्रकार है या नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर जब अपने आप को पत्रकार कह रहा है उसको ABCD नहीं पता। आपने बहुत अरसा इस फील्ड में दिया है, नजदीकी से काम किया, धरातल पर काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया है, लोगों को आप जानते हैं समझते हैं तब आप पत्रकार बने हैं। लेकिन लोगों की कैसे आत्मा गवारा करने को ये कह देती है कि मैं पत्रकार हूं जबकि उनको कुछ पता नहीं होता, और जिसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि उनको वो सम्मान भी नहीं मिलता। सम्मान तो छोड़िए कि वो अक्सर समाज में पिटते हुए नजर आते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं और बाकी आप मुझे करेक्ट करेंगे क्या सही है क्या गलत है।
2: देखिए सर, मैंने आपको एक बात बताई कि सही और गलत ये दो लोग जो है या दो चीज़ें हर एक प्रोफेशन में और हर एक जगह पाई जाती हैं। उसको सही करना जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो सत्ता में बैठे हैं लोग। अब हम बात करें जिसकी बात बार बार हो रही है कि यूट्यूबर, और यूट्यूबर हैं वो मीडिया पर्सन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी लोगों से, अब आपने ध्यान दिया होगा कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पॉलिटिकल गैदरिंग्स, बड़े अधिकारियों के उसमें देखिएगा तो मतलब डर्जन्स ऑफ माइक आईडीज लगी होती हैं
0: जी।
2: और जितनी ज़्यादा माइक आईडी का जमावड़ा होगा उतना बड़ा उसका मीडिया प्रेजेंस है। तो क्या उस समय चेक किया जाता है कि यूट्यूबर है कि नहीं है? आप चेक करते हैं, आप चेक नहीं करते। आप चेक तब करते हैं जब वो आपके खिलाफ बोलना स्टार्ट करता है। मैं जानना चाहता हूँ आप पहले क्यों नहीं चेक करते? आपको सिस्टम में हर चीज़ पता है ना, सिस्टम बना हुआ है ना। कोई जैसे सपोज कीजिए कोई व्यापार कर रहा है, वो अफीम या गांजा बेच रहा है, तो उसको मॉनिटरिंग करने का आपके पास सेल है ना
0: जी।
2: तो आपके पास सेल है ना कि कौन सही है कौन गलत है, तो आप पहले क्यों नहीं करते? जितने भी पत्रकारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है आप उसमें ध्यान दीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि वो आज से काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी मुझे आज तक ऐसा केस नहीं मिला कि जिसको ये पता हो, जिसमें ये लग रहा हो कि वो आज आया और दो दिन या चार दिन बाद उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर कोई आरोप लग गया। ये आपको पता चलेगा तो कई साल से काम कर रहा है, उस जिले में काम कर रहा है। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ सर, जो एक नॉर्मल तरीके से रखा गया था
0: जी।
2: ये रखा गया था कि आप जो है, जैसे सपोज कि मैं एडिटर इन चीफ हूँ, हम अपने यहाँ किसी रिपोर्टर को हायर करते हैं और रिपोर्टिंग करने के लिए देते हैं, तो हम एक DIO को लेटर देते हैं। DIO को लेटर देकर हम ये बताते हैं कि हमने आपके क्षेत्र में इस बंदे को एज अ रिपोर्टर रखा है, वो आपके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह अटेंड करने के लिए अधिकारी हमारी तरफ से नॉमिनेट है और वो करेगा, और उसकी IDs वगैरह हम उसमें डाल देते हैं
0: जी।
2: इस तरीके से अच्छा, उसकी एक कॉपी उनके पास जाती है, एक DM के पास जाती है, एक पुलिस में जाती है
0: जी।
2: तो सर क्या आप उसकी वेरिफिकेशन करते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है।
0: बहुत अच्छी बात।
2: अगर हर एक चीज़ें टाइम से होने लगें तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ कंट्रोलिंग में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने वही एक बात कही कि बात वहीं आकर रुकेगी कि जब ये बात होगी कि आप क्या डिसाइड करेंगे कि ये पत्रकार है कि नहीं, क्या सिस्टम डिसाइड करेगा? और अगर सिस्टम डिसाइड करने लगा, मतलब गवर्नमेंट अगर डिसाइड करने लगी कि कौन पत्रकार है कौन नहीं है, तो एक बात बताइए, इसके मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठेगी कैसे? अगर आपने कहा कि ये पत्रकार है तो वो पत्रकार कैसे बोल देगा कि चीज़ गलत है या सही? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसमें काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और जो पत्रकार बंधु हैं, जो सीनियर बंदे हैं, या जो है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पत्रकारों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं, उनको एक राउंड द टेबल बैठ के इस पर काम करने की ज़रूरत है, चूँकि कहीं ना कहीं पत्रकार और पत्रकारिता पर चोट तो है
0: जी। चूंकि ये बात को मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, इसको अगर मैं समराइज करूँ तो बात निकल कर ही सामने आ रही है कि निश्चित तौर पर हम बात कर रहे हैं या जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनके एक शब्द से क्योंकि फॉलोअर्स हैं, लोग उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक गलत मैसेज जाता है जिसकी वजह से दिक्कतें
2: सर में आ जाती है। सर पता कैसे होगा? मैंने आपसे एक बात कही ना कि आज की डेट में हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं जा रहे हैं और हम इवेंट शो कर रहे हैं, हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनसे बाइट ली जा रही है, आप क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि सर जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे ना तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके विषय में बात करनी पड़ेगी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा आपको, उसमें मेहनत लगेगी आपको, काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी एक बात आ जाती है कि अभी कुछ गाइडलाइंस वगैरह आई हुई हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन चीज़ों को नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टिगेशन, जिस पर काफ़ी कुछ बीच में जो है इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन भी हुआ है कि अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो आप लिखोगे क्या, आप बताओगे क्या, क्योंकि आप सही कहने के लिए आपको तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना, आपके पास कोई मैटर आता है तो आप इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते तो कैसे आप काम करोगे, फिर तो आप एज अ जर्नलिस्ट रहे ही नहीं ना, आप तो इवेंट मैनेजमेंट हो गए, इवेंट मैनेज कर रहे हैं, तो देर इज अ लॉन्ग डिफरेंस, मतलब डिफरेंस है कि एक आप खड़े होकर जैसे सपोज कीजिए आप एंकरिंग करते हैं सर, शादी के एंकरिंग करते हैं तो जो होता है उसको आप बताते हैं किस तरीके से इवेंट हो रहा है, बट एज अ मीडिया चैनल अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो वहाँ पर उसकी बैक डोर पे क्या हो रहा है उसको आप निकाल के लेकर आएंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं ये जो दिख रहा है इसके पीछे भी ये चीज है, उस कहानी को आप बताएंगे जो मुझे लगता है।
0: बहुत खूबसूरत, आपको जो लगता है बहुत अच्छा लगता है, और आपकी बातों से मैं भी यूँ समझ ली कि दो चार हो रहा हूँ, मैं भी समझने का एक मौका मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छी बातें आपने कही। और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो समाज में ज़रूर अच्छी अच्छी बातों को प्रसारित करिए, उनको प्रचारित करिए, लेकिन बहुत सोच कर समझ कर तोल मोल कर बोलिए, क्योंकि वर्तमान समय में हम ये भी देखते हैं कि ये हमारा संविधान का अधिकार है, हमारी आज़ादी, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी एक बोल से कहीं बात बन भी सकती है, कहीं बात बिगड़ भी सकती है। अनन्या खामोश है, अनन्या से हम जरूर जानेंगे ब्रेक के उस पार, क्योंकि यूथ की आवाज़ यानी कि चैट जीपीटी और एआई के समय में हम क्या करें क्या ना करें। सो कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ भारत न्यूज 360 टीवी से आप हैं एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ी हुई है अनन्या ठाकुर इसी चैनल से जो कि ब्यूरो चीफ और ऑपरेशनल हेड है। तो मैडम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है। पुराने समय में हम स्क्रिप्ट लिखा करते थे, एक अनुभव के आधार पर हम काम किया करते थे। आज के समय में आप क्या देखती हैं, ये कितना सही है कितना गलत है चैट जीपीटी एआई?
1: एआई का अगर देखें गगन जी तो यूज बहुत अच्छा है अगर आप उस पे, क्योंकि पहले होता था मैन पावर बहुत ज्यादा लगती थी, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, एक एक वर्डिंग आपको चूज करनी पड़ती थी। अभी आप प्रॉम्प्ट डालते हैं एआई में, आपको चीजें निकल के आ जाती हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी स्ट्रेंथ जो आप उसको कहीं ना कहीं अच्छी चीजों में लगा पा रहे हैं, आप मैनुअली से सीधा आप इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, चीजें बहुत स्मूथ हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका हम अपने माइंड का यूज बहुत कम कर पा रहे हैं, जिससे हमारा कहीं ना कहीं स्किल है वो दबता जा रहा है। आज का यूथ बहुत फास्ट चीजें ग्रो करना चाहता है, जो कि उस पे अपने माइंड का बिल्कुल वो यूज ही नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट कि जैसे कि हम पहले देखते थे, हम सारी रात बैठ के स्क्रिप्टिंग करते थे, कल हमें क्या कॉन्फ्रेंस पे जाना है, कौन कौन से इंटरव्यूज करने हैं, उसकी तैयारी हम बहुत पहले से कर रहे होते थे। अभी क्या होता है कि उनको पता है एआई करना है, उनको रेडी है, पहले से माइंडसेट उनका क्लियर है, प्रॉम्प्ट डालना है उनके लिए, स्क्रिप्ट आ जाएगी। तो एआई एक तरीके से हमारे लिए बहुत स्मूथ है, हम अगर उसका अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें पर डे की न्यूज आप देखते हैं, तो पहले क्या होता था कि चीजों को एक समराइज करना पड़ता था, चीजों को बहुत कैलकुलेटिव चीजें करनी पड़ती थी। और अभी एआई में वो सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास आ जाती हैं। रिसर्च में बहुत हेल्प हो रही है कि अगर हमें किसी का भी व्यक्तित्व जानना है, किसी के बारे में रिसर्च करनी है, बहुत पहले कि अगर हमारे पास कोई पेंडिंग केसेस है, हमें उसका प्रॉपर अगर जानना है, कोई भी नॉलेज लेनी है, तो वो हमारे लिए बहुत स्मूथ हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है।
0: वेरी गुड। और साथ ही साथ लिसनर्स, मैं कुछ बातें यहाँ जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है इसका एक जो दूसरा पहलू है कि लोगों की जॉब्स भी गई हैं। एआई आपसे ये भी कह रहा है कि इसके बारे में जानिए, पढ़िए, कोर्स करिए, तो निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में ये कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। जब कोई चीज आती है तो निश्चित तौर पर दिक्कतें परेशानियां होती है, लेकिन वक्त के साथ वो समाज में कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपका इंटरनेट चला गया, इंटरनेट नहीं है क्योंकि आप इंटरनेट पर ही एआई के माध्यम से चीजों को फाइंड आउट करते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप भैया? शायद अनन्या का कहने का मतलब ये है कि आपको अगर बेसिक नॉलेज है, आपके पास अनुभव है, तो आप जाके कहीं थोड़ा एआई के बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से निर्भर होना ये भी बहुत गलत बात है। इसके बारे में आप जरूर जानिएगा, जरूर सोचिएगा। चूंकि सर जिक्र हो रहा था कि यहाँ एआई चैट जीपीटी का, युवा आप भी हैं, युवा मैं भी हूँ, युवा अनन्या भी हैं, तो मैं एक युवा के लिए, एक पत्रकार स्टूडेंट्स के लिए एक फाइनली क्या मैसेज आपकी तरफ से जाएगा, क्या आप कहना चाहते हैं, एक छोटा सा संदेश?
2: सर एआई यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, इट्स गुड थिंग, बट सबसे पहले आप कॉमन सेंस यूज़ कीजिए।
0: क्या बात, नाइस
2: ना। आप सेल्फ स्टडी आप कभी नहीं छोड़ सकते ना। दूसरी चीज़ की जैसे कि आज की डेट में आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो सीधे सीधे एंकर बनना चाहते हैं, बट एंकर बनने के पहले आपको जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा।
0: क्या बात,
2: आप केवल टीपी पे जो लिख दिया गया वो आप केवल पढ़ रहे हैं, हाँ। तो वो एक कभी ऐसा होगा तो ब्लैकआउट हो जाएगा दो मिनट के अंदर। आपको पता होना चाहिए क्या है, क्या चल रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी ठीक है, आप प्रॉम्प्ट डाल के चीज़ों को कर लीजिए, लेकिन उस विषय को आपको डिगिंग करना आना चाहिए
0: जी।
2: आप टोटली डिपेंड हो गए वो, लेकिन इसके साथ ही आने वाला टाइम लेटेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। एक चीज़ को समझिए जो है कि टाइम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। अगर आप बात करें किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी दूसरे टेक्नोलॉजी आने में 10 साल 12 साल लगते थे। आज आप एक वर्जन से दूसरे वर्जन आने में 6 महीने में भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे आपने भी बीच में भी कहा था कि इसमें जॉब्स बहुत जा रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो सर जॉब जाती तो हैं, लेकिन जॉब उनकी जाती हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने को अपग्रेड नहीं करता। आज का युवा, आज का बच्चा इस बात को ध्यान रखे कि आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आप अपग्रेड करते चलना है। आप पहले जो लोग कमाते थे उससे आप 20 गुना कमाना स्टार्ट कर दोगे, इस फैक्ट कमाओगे, लेकिन आपको उसी तरीके से मेहनत भी करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी और ट्रेडिशनल में भी। दोनों को अगर आपने मैनेज किया तब तो ठीक है, लेकिन आप किसी एक पर डिपेंडेंसी आपने की तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सो लिसनर्स, इस बात को अगर हम वो एक सार निकालें, कोशिश करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहा यह भी जाता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि संदीप तिवारी जी की बात को ही मैं आगे लेकर जा रहा हूं कि आप वक्त के साथ चलिए, कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़िए, कोर्स करिए, सीखिए, समझिए और अपने आप को समय के साथ आगे लेकर जरूर जाइए। देखिएगा एक न एक दिन वक्त आपका जरूर आएगा और आप कह सकते हैं कि वक्त हमारा है। बातों का सिलसिला यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जुड़े रहे भारत न्यूज 360 टीवी के आप एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी, साथ ही साथ जुड़ी रहीं हरफन मौला एक एंकर और ब्यूरो चीफ ऑपरेशन हेड अनन्या ठाकुर जी इसी चैनल से। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो लिसनर्स, ये वार्ता आपको कैसी लगी? 0120 यानी कि 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं और मेल जोल बढ़ा

आना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे रेडियो एफएम के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय, नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरुशारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं को दिक्कत परेशानी न हो और जहां से भी आप गुजरे वहां फूल ही फूल मिले, शूल न मिले। ये भी सही था। ब्यूटिफुल ट्रैक ऑल यू ऑन सुरुशारदा 90.8 FM, बैक ये फ्रॉम द मूवी आयशा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: अरे तू हानि कर दी कुड़िया की खाके जमी, अर्थात कवि का आशय ये है कि आपने क्या खाया है, अर्थात आप जब दुनिया में आए तो आपके घर वालों ने क्या खाया था। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ।
1: नहीं नहीं, आप तो बहादुर हैं।
0: हाँ, मैं बड़ी बहादुरी से बात करता हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। भाभी जी, अरे नहीं नहीं, बुलाना नहीं, बुलाना नहीं। इसके पीछे लंबी दास्तान है। अब तुम पूछोगे कि तुम्हारा नाम बहादुर कैसे पड़ा, मैं किसी दिन बाद में सुनाऊंगा जब तुम हवेली पे आओगे।
1: नहीं नहीं, अगर आप सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं।
0: देखो, अपनी बीबी का सामना करना वो भी बहादुरी से कम नहीं है, तब से मेरा नाम बहादुर पड़ गया।
2: सच बात है कि घर में सुख शांति चाहते हैं तो खामोश रहने में तरक्की है, बरकत। गुड मॉर्निंग,
0: ये विषय गगन और हम दोनों एक हो गए। तो क्या खबर लायो कालिया? नहीं नहीं, मेरा नाम गगन है। अच्छा, क्या खबर लायो गगन?
1: खबर से खबरदार हम आपको कर देते हैं। 9:13 हो चुके हैं, 22 तारीख है। मुझे लगता है कि जिंदगी के रास्ते सरल सुगम आसान हो जाए, हंसते मुस्कुराते आप अपने गंतव्य स्थान पर यथा समय पहुंचे ताकि कोई दिक्कत परेशानी न हो। दिल्ली NCR में ऑन रोड जब आप चल रहे तो 10 से 15 मिनट या यूं कहें कि कभी 20 से 25 मिनट या यूं कहें कि 15 से लेकर आधा घंटे के बीच में अगर आप पहले निकलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। फिलहाल उससे पहले, ट्रैफिक की अपडेट से पहले, मैं बात करना चाहूंगा मौसम का। जो मिजाज है वो बदल तो हुआ नजर आ रहा है, सुनने वाला है कि आज 22 तारीख को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यानी कि दिल्ली NCR में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन IMD के अनुसार, बोले तो मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की विदाई शुरू होने के कारण क्षेत्र को बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन तेज धूप की वजह से दिन में उमस और गर्मी बढ़ सकती है। टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम ग्रेटर नोएडा का, 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम ग्रेटर नोएडा का, और उमस के आसार बने हुए हैं 58%। यानी कि जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके पास छोटा सा टॉवल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और उसके बाद एक पेड़ के नीचे आप सुस्ता सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, है ना?
3: यारा मेरे दिल के,
1: आए हाय यारा मेरे दिल के कर।
2: सच बात है, जिसको आप चाहते हैं वो अगर मिल जाए तो वो नसीब बन ही जाता है, लेकिन कहीं कहीं मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती तो उसका मतलब आप परेशान मत होइएगा।
0: हाँ गगन की तरह मूव ऑन आगे बढ़ जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा।
2: बिल्कुल सच बात है। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, और शारदा विश्वविद्यालय के सामने जो गाड़ियों का जमावाड़ा हो जाता है, जमाववाड़ा, उससे अपने आप को बचा कर रखिएगा और एम्बुलेंस को रास्ता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ।

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट्स सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में नौ उसका 22 मिनट हो चुके हैं। 22 तारीख है यानी कि 22 सितंबर। वक्त हाथ से रेत की माफी फिसलता चला जाता है। अगर आप वक्त पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि एक ना एक दिन आपका वक्त जरूर आएगा, लेकिन अगर आप उसी वक्त को निकालते चले जाएंगे तो आपका वक्त वहीं से खराब होना शुरू हो जाएगा। नुक्ता सही था बेटा? हाँ करेक्ट करेक्ट था, शाबाश। और क्या खबर लायो कालिया?
2: मेरा नाम गगन है।
1: अच्छा गगन, और क्या खबर लायो गगन?
3: खबर से खबरदार कर देते हैं, यानी कि ट्रैफिक से आग, अगर आप अपने आप को बचाकर रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि नियम कायदे कानून के साथ चलना बहुत जरूरी है। ओवरटेक ना करें, गलत दिशा में गाड़ियों को ना चलाएं, और जब आपको बताया कि गाड़ियों की लंबी लंबी लेन लाइन लगी हुई है तो अनावश्यक तौर पर पी पौ हॉर्न ना बजाएं। ये तो रही ज्ञान विज्ञान की बात। दूसरी बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि UPITS 2026 की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इस शुक्रवार यानी कि 25 सितंबर से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं, और जो आगंतुक हैं, जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पार्किंग एरिया में मुख्य वेन्यू के बीच 500 इलेक्ट्रिक शटल बसें चलाई जा रही हैं। तो बस हमारा फर्ज बनता है कि हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, हम मेजबान हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी उनको होनी नहीं चाहिए। इस उत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी ने अफवाह उड़ा दी है कि शुक्रवार को अवकाश रहेगा, ये देखने वाली बात है क्योंकि फुटफॉल ज्यादा है। हाँ अफवाह मतलब सच भी हो सकती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूँ अगर आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग,

0: कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया।
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: गिपी ग्रेवाल की आवाज में सिर्फ और सिर्फ सुरुशादा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ 9:32, 22 तारीख। गुड मॉर्निंग। हंसते मुस्कुराते जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो सडनली अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाए या आपका फोन चोरी हो जाए तो बहुत दुख होता है।
1: टेल मी व्हाट वॉज द लोकेशन?
0: उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा।
1: हाँ समझो गया, टाटा बाबा खत्म।
0: मतलब
1: उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी इज हियर एंड कानून व्यवस्था इज दुरुस्त।
0: यही गर्व के साथ हम लोग कह देते हैं कि कानून व्यवस्था तंदुरुस्त है, दुरुस्त है, और उसके बाद भी अगर इस तरीके की घटनाएं चोर या बदमाश कर रहे हैं तो उनको सोचना होगा और निश्चित तौर पर वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर हम क्षण भर सोच लें कि ये दुख आपको हो रहा है, आपकी फैमिली को हो रहा है, क्योंकि आप एक जघन्य अपराध कर रहे हैं और आप भूल रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब इस घटना के पीछे बात निकल कर ये सामने आ रही है कि किसी एक लड़की ने आईफोन

कीपोर्ट वाले से काम हो जाता है, सी चार्जर, पिन वाला, लंबी पिन वाला, मोटी पिन वाला चार्जर, जब वो सुनते थे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता है कि हर हाल में खुश रहना चाहिए। अगर ये आपके पास सब कुछ है तो खुश रहिए, नहीं है तो भी खुश रहिए, बस प्रयास करते रहिए और देखिएगा सब कुछ एक न एक दिन आपके पास जरूर होगा, वो जो आप हासिल करना चाहते हैं, बस ईमानदारी के साथ, बेईमानी के साथ नहीं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सुनूं शारदा 90.8 FM पर। तेरे बिन कैसे जिया, आतिफ असलम की आवाज जो आफत मचा देती है, ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ सुनूं शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ तेरे बिन।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने

0: स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जाने। ये खास जानकारी सुनो श्रोता 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

इस गाने में मैं खो गया। सच बात है, जब आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, पागलों की हद तक प्यार करते हैं और सडनली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए तो दिल तो दुखता ही ना। लेकिन अक्सर हमने ये भी देखा है कि लोग अपने आप को बहुत चोट पहुंचा लेते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करेगा। मूव ऑन यानी कि आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। छोटे छोटे कदमों से जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। कल्पना करिए कि अगर आपने खुद को चोट पहुंचा ली तो आपको चोट तो पहुंच ही रही है, लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं, आपकी फैमिली, उनको बहुत ज्यादा दिल दुखेगा। चलिए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। नमस्कार प्यार, 45 मिनट हो चुके हैं। 22 सितंबर क्या है हमारे आसपास, उसके बारे में जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। फिलहाल एक गेम चल रहा है जिसका नाम है एशियन गेम्स और जापान के आइची नागोया ये गेम वहां खेले जा रहे हैं। एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया और महिला क्रिकेट इवेंट में आज 22 सितंबर को एक खास मुकाबला होने जा रहा है और भारत वर्सेस श्रीलंका गोल्ड मेडल के लिए महामुकाबले को आज ये स्टार्ट होगा 10:30 बजे और टीवी चैनल पर ये आप मुकाबला देख पाएंगे। और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, टॉस हो चुका है और टीवी चैनल्स पर जैसे कि सोनी स्पोर्ट्स, टैन 3, सोनी लिप पर भी आप इसका लुत्फ उठा पाएंगे। और हम अपनी टीम के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं देते हैं, शुभकामना देते हैं और निश्चित तौर पर वो कहते हैं ना कि मारी छोरियों क्या छोरों से कम है, कतई कम ना है जी। चलिए इस टीम के लिए लक लक बधाई और हम इंतजार कर रहे हैं कि गोल्ड हमारी झोली में आएगा। सोना कितना सोना, नहीं नहीं अंताक्षरी नहीं, अच्छा मुझे लगा कि शुरू हो जाओगे गगन, इसलिए मैं शुरू हो गया। क्या गाना है, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन, अरे मैं हूँ बहादुर।

क्या बात है, हारमोनियम आए है। और खास बात ये कि गाना भी बहुत खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ऑनली सुरू शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। भाई ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव। मैं रहता हूं आपके साथ। हाय चलिए का इशारा मैं होता हूँ 9:11, लेकिन उससे पहले कुछ और खास बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि इसके बारे में भी निश्चित तौर पर हम बात कर सकते हैं और बात करनी चाहिए। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो 22 सितंबर को ऐतिहासिक कहते ना कि आज के दिन क्या खास हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो आज के दिन 1965 में एक युद्ध हुआ, उसके बाद आज ही के दिन यूएन की पहल पर मध्यस्थता के बाद यानी कि बीच बचाव के बाद आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम यानी कि सीज फायर घोषित किया गया। आज के दिन 1599 में लंदन में 21 ब्रिटिश व्यापारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक नई कंपनी बनाने की योजना बनाई गई और यह आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का पहला कदम साबित हुआ। इन्होंने क्या काम किया वो हम सब जानते हैं। खैर, अगर आपकी मंशा अच्छी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि कोई काम आपके चलेंगे ही नहीं। आज के दिन 1539 में सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का करतारपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, आज ही के दिन उनका निधन हुआ था और जिससे सिख इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनके काम को हम सराह रहे हैं, उनको हम नमन कर रहे हैं। दुर्गा खोटे, जो कि भारतीय सिनेमा और थिएटर दिग्गज अभिनेत्री दुर्गा खोटे को आज ही के दिन उनका निधन हुआ 1991 में, आज हम उनको याद कर रहे हैं। और इसके अलावा और क्या खास है, जैसे कि दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोजकर्ता वाले जो पहले श्रेय जाता है माइकल फैराडे को, आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वक्त का भी इशारा मैं लेता हूं आपसे अनुमति, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। SSMFE का ये है शारदा यूनिवर्सिटी का सुनो शारदा 90.8 FM। वक्त का इशारा और मैं आपसे अनुमति ले रहा हूं और जाते जाते एक ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। ये गाना मुझे मिल गया और आई होप इस गाने को आप एंजॉय करेगा, अपना ख्याल रखेगा, है ना। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। आए है चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी पूरे खुश आवाज में चलाएगा। नमस्कार।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: हरियाणा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

संयम से जीवन सफल हमारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुँचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे, जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
1: 90.8 FM। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।

0: महावारी एक महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक कुदरती घटना है, फिर भी ये दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए नियमित तौर पर और भयंकर रूप से उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में रुकावट बनती है।
1: महावारी एक ऐसी घटना है जिसका सामना महिलाएं और लड़कियां मानव जाति की शुरुआत से ही करती आ रही हैं। हालांकि यही मानव जाति के लगातार अस्तित्व में बने रहने का कारण भी है, फिर भी एक महिला की महावारी के साथ बहुत ज्यादा शर्म और संकोच जैसे भाव जुड़े हुए हैं।
0: महावारी को अक्सर खून, अशुद्धता और घृणा से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत बात है। इसी कारण से महिलाएं अपनी महावारी के बारे में बात करने में संकोच महसूस करती हैं।
1: इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही महावारी और मासिक चक्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। महावारी से संबंधित गलत अवधारणाओं या मिथकों को दूर करने में लड़के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: आप सुन रहे कार्यक्रम सीएसआई लाभ कई और जैसा आप सभी जानते हैं कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो चुका है और जो हमारी आशा बहन जी हैं वो भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लोगों को जागरूक करने में घर घर जाती हैं और बहुत सी बातें वो बताती भी हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ में हैं आशा बहन जी, साधना जी। तो सबसे पहले तो बहन जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप आशा हैं तो एक आशा के तौर पर क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं?
3: सर, हमें टीकाकरण पर जाना पड़ता है। टीकाकरण में जब गर्भवती वगैरह मिलती हैं हमें उन्हें बुलाना पड़ता है, बच्चों को भी बुलाना पड़ता है, वो टीकाकरण करवाते हैं, नहीं आते हैं तो उन्हें बार बार ये समझाना पड़ता है।
2: अच्छा, जैसे कि आप घर घर जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ता होगा।
3: सर, जैसे ये कह देते हैं कि जो है ना, क्या नाम है, हमारे बच्चे को तो बुखार आएगा, हम नहीं लगवाएंगे, उनके पापा ने मना कर दिया, या 6 महीने तक अपना दूध भी नहीं पिलाते तो हम बताते हैं उन्हें कि अपना 6 महीने तक अपना दूध पिलाया करो और जो है ना कि बच्चे को टीका लगता है तो ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि बच्चा आपका ठीक है। जब आपको बच्चे को टीका लगेगा तभी तो आपका बच्चा ठीक है, इसलिए हम कई कई बार उनके घर जाके बताते हैं, समझाते हैं।
2: तो जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, किसी का प्रसव होने वाला हो, आप हॉस्पिटल ले जाती हैं तो किस तरह से, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
3: पहले हम 3 महीने तक तो

0: का तीसरे महीने पर टीकाकरण करवाते हैं, फिर अगले महीने उनका चार बार चेकअप करवाते हैं। दो उनका टीका लगवाने के बाद उनका फिर हमें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो हमें ये पूछना पड़ता है उनसे कि सर क्या आप डिलीवरी कहाँ करवाए गए सरकारी में, तो वो जब सरकारी के लिए तैयार होते हैं तो हम उन्हें सरकारी को पूरा चीज़ दिखाते हैं, आपको पूरा जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ है, घर डिलीवरी मत करना वरना घर में ये खतरे हो जाएंगे।
1: और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको खान पान की क्या बात बताती हैं?
0: हरीदार सब्जियाँ, दाल रोटी, यही सब सारा सामान बताते हैं सर।
1: और आखिर में जानना चाहेंगे स्वच्छता के बारे में, जैसे आप घर में क्या बताती हैं जाके लोगों को?
0: हाथ धो के खाना पीना साफ सफाई के बारे में बताते हैं सर, और बच्चे को मतलब क्या नाम है मच्छरदानी के अंदर सुलाया करो क्योंकि मच्छर काटने से बुखार हो जाता है, यही चीज जानकारी वगैरह देते हैं।
1: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही। और जैसा आप सभी जानते हैं कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो चुका है और सरकार का बहुत जोर है कि सभी बच्चों का टीकाकरण हो और जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको भरपूर पोषण मिले। और हमारी जो ANM बहन जी हैं वो उनकी भी अहम भूमिका है इस कार्यक्रम में। तो आज हमारे साथ में हैं ANM बहन जी संगीमल जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ANM बहन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्ते।
0: और जैसा हम देखते हैं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं खून की कमी की समस्या अक्सर देखने को मिलती है, तो क्या वजह है और किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है?
1: देखिए, वजह तो यही है कि वो अपने आप को ध्यान नहीं दे रही हैं, या तो कुछ लोगों के पास सुविधा नहीं है और वो हमारे पास आती हैं तो हम उनको इंजेक्शन लगाते हैं, तो हम उन्हें आयरन कैल्शियम की टेबलेट देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल डाढ़ा CSC पे भेजते हैं या जिम्स हॉस्पिटल में भेजते हैं।
0: तो जिन महिलाओं में खून की कमी है, खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो किस तरह से उसको पूरा किया जा सकता है, क्या उनका खान पान होना चाहिए, तो आप बताती होंगी।
1: मैं बोलती हूँ कि अगर आपके पास सक्षम है खाने के लिए तो आप दूध खाइए, हरी

0: पत्तेदार सब्जियां खाइए, जो हमने आयरन कैल्शियम की दवा दी है वो खाइए, पनीर खाइए। लेकिन जिनके पास नहीं है सुविधा, नहीं सक्षम है, तो वो तो साग सब्जी हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकती हैं और हम अपनी दवा देते हैं आयरन कैल्शियम की। और हमारे सीएससी पे ब्लड चढ़ने के लिए भी एक आयरन सिरप आती है, वो चढ़ाया जाता है।
1: तो कहने का मतलब ये है कि अगर सक्षम नहीं है आप, अच्छा जैसे पौष्टिक आहार है जैसे आपने बताया, तो कहीं ना कहीं जो हरे पत्तेदार साग सब्जियां उसके जरिए भी जो खून की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे पहले अक्सर हमारे जो घरों में है ना, जो लोहे की कढ़ाई होती है तो उसमें खाना बनता था, तो उसका कुछ फर्क पड़ता है?
0: बिल्कुल, अभी भी हम यही बोलते हैं कि अगर आप पालक वालक साग कोई भी सब्जी बनाइए तो आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो आप उसी में बनाइए, क्योंकि उसका बहुत फायदा होता है, उससे आयरन बहुत तेज बढ़ती है।
1: एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी गर्भवती महिला में खून की कमी है तो उसके बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा?
0: बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए कि बच्चा भी कमजोर होगा, जब वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाएगी तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं, उसे तो ऑपरेशन के वो आ जाएगा।
1: तो कहने का मतलब यही है कि खान पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और खासकर गर्भवती महिलाओं के सबके लिए, कि आपको कुपोषण का शिकार ना हो, और जो खान पान होता है कहीं ना कहीं आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उस पर भी उसका बहुत असर होता है। तो ज़रूर एएनएम बहन जी की बातों का आप ध्यान रखिएगा कि पोषण का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। अब बात करते हैं टीकाकरण की, तो टीकाकरण कितना ज़रूरी है हमें थोड़ा बताइए, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के बारे में और बच्चों के टीकाकरण के बारे में।
0: गर्भवती महिलाओं के लिए तो टीकाकरण इसलिए जरूरी है कि जैसे ही गर्भ का पता चले वैसे टीटी का पहला टीका लगना चाहिए, ताकि कोई ऐसा वो ना हो जाए कि उसे टिटनेस की कोई वो हो, उसको टिटनेस का वो होगा तो उससे बच्चे को फैलेगा। तो उसके लिए हम टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं तीसरे महीने में, उसके एक महीने बाद हम टिटनेस का दूसरा टीका लगाते हैं और उसके लिए दवा देते हैं हम, इसी के लिए होता है कि टिटनेस की बीमारी ना हो। और बच्चे के लिए तो सरकार बहुत सारे टीके जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में 5-5, 6-6 हज़ार के लग रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री सुविधा दे रहा है, तो बच्चे के लिए एक एक दवा इंजेक्शन जो है वो बहुत महत्व है उसके लिए।
1: बिल्कुल एएनएम बहन जी, हम भी रेडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो हमारे सुनने वाले हैं, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान जरूर रखें, और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे खास करके जो महिलाएं उनके लिए और बच्चों के लिए?
0: मैं तो यही कहूंगी कि भाई वो अपने को ध्यान दें, खाने पीने के लिए भी ध्यान दें, और अपने बच्चे को भी टाइमली आके टीके इंजेक्शन फ्री सुविधा मिल रही है तो लगवाएं।
1: बिल्कुल, तो जरूर सब इस तरफ ध्यान देंगे कि जो निशुल्क टीकाकरण होता है समय पर बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं, ताकि भविष्य में होने वाली बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सके और फिर आपको पछताना ना पड़े, और साथ ही साथ अपने पोषण का जरूर ध्यान रखें। एएनएम बहन जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, भारत की अधिकतर जनता गांव में रहती है और इसमें से भी आधे गांव बिना बिजली के ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब भारत ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब हम ऊर्जा के अधिकाधिक उत्पादन के लिए, ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में उसके नवीनीकरण और बचाव के लिए कदम उठा सकते हैं और इस मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग सर्वोत्तम उपाय है, जिससे हम ऊर्जा की मांग और पूर्ति के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। किसान मित्रों, भारत के गांव और शहरों में भी अब सौर ऊर्जा का उपयोग संभव हो गया है। एक समय था जब भारत के अनेक गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन तकनीकी विकास और सौर ऊर्जा की मदद से आज भारत के अनेक गांवों में बिजली है। हालांकि आज भी भारत में ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल हुए हैं। और किसान मित्रों, आजकल सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी किसान भाइयों की काफी मदद कर रही है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को सोलर पंप लगाकर उनके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को सस्ते दामों पर सोलर पंप लगवाने की सुविधा दी जाती है, जो उनकी खेती के लिए जल सप्लाई की समस्याओं को हल करता है। इस योजना के तहत मात्र हमारे किसान भाइयों को कुल लागत का 10% ही देना होता है और ये पैसा देकर के वो अपने यहाँ पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी हमारे किसान बहन भाई प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के बात कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। किसान मित्रों, आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसे ताज़ा फल सब्जियां मिलें, साथ ही वो रोग रहित हों, स्वस्थ हों और उनमें कम से कम कीटनाशकों का उपयोग किया गया हो। इसीलिए आज के समय में लोग अपने घरों में गृह वाटिका बनाते हैं ताकि उनको ताज़े फल सब्जियां मिलती रहें और जो बाज़ार जाने में आने में उनका जो समय लगता है वो बचा रहे। साथ ही साथ आज की जो आभासी दुनिया है इंटरनेट की, उससे कुछ राहत मिले और वो कुछ कृषि कार्य करें ताकि उनका जो मन है वो प्रफुल्लित हो और जो तनाव है आज की जिंदगी में वो कम हो। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पोषण सुरक्षा में गृह वाटिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे रसोई उद्यान या किचन गार्डन भी कहते हैं। ये घर के आसपास या छत पर उगाई जाने वाली एक बागवानी है, जहां परिवार के उपयोग के लिए रासायनिक कीटनाशकों से मुक्त मौसमी फल, फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं। गृह वाटिका पोषण सुरक्षा, आर्थिक बचत और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये मनोरंजन और बच्चों को प्रशिक्षण का भी अच्छा साधन है। किसान मित्रों, गृह वाटिका उस वाटिका को कहा जाता है जो आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है, जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल के लिए विभिन्न मौसमों में मौसमी फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। किसान मित्रों, गृह वाटिका से परिवार, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को तरोताजा हवा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन से युक्त फल, फूल और सब्जियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा बगिया में कार्य करने से शारीरिक व्यायाम भी होता है। इससे परिवार के सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। किसान मित्रों, प्रत्येक छोटे परिवार में औसतन 100 रुपए की सब्जी प्रतिदिन बाजार से खरीदी जाती है। इस प्रकार प्रतिमाह 3000 रुपए की बचत कर सकते हैं गृह वाटिका बना करके। इसके अलावा यदि फलदार पौधे जैसे नींबू, पपीता, आम, अमरूद ये भी बगिया में लगे हों तो फलों के लिए खर्च होने वाले बजट की भी बचत की जा सकती है। स्वयं की मेहनत और पसीने से उपजी हरी भरी तरोताजा सब्जियों को देखकर सभी का तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसके अलावा सब्जियां खरीदने के लिए बाजार में जाने का बहुमूल्य समय भी बच जाता है। वैसे किसान मित्रों, स्वयं की देखरेख और मेहनत से पैदा की गई सब्जियों का स्वाद और आनंद कुछ और ही होता है। तो जो भी हमारे भाई गृह वाटिका बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बहुत सी जगह बची होती है उनके घर आंगन में, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। शर्त यही है कि वहां पर धूप का आना जाना हो, ऐसी जगह आप गृह वाटिका स्थापित करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

एक बात और मेरे दिमाग में आई कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चल चढ़ा कोई बंद चला जंजीर, क्योंकि सिकंदर जैसे जब गए तो दुनिया से खाली हाथ गए थे, एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा पाए। तो भाई हमारी और आपकी तो फिर बात ही क्या है। तो तीसरी बात में दाता ने एक चीज और बताई, भाई माया झूठी है, इसके पीछे बावड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग मानते कहां है। सुनेगा तीसरी बात में।

किसान मित्रों, अभी आप प्रियंका चौधरी से ये उपदेश सुन रहे थे। किसान मित्रों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने किसानों को हर माह पेंशन देने के लिए किसान मानधन योजना चला रखी है। इस योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को पेंशन के रूप में 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर माह 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी किसान भाई इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में भाग ले सकता है। योजना में उम्र के हिसाब से किश्त की राशि तय होती है। इसके लिए 18 से 29 साल की उम्र के किसानों को 55 से 109 रुपए के बीच की किश्त देनी होगी। 30 से 39 साल की उम्र के किसानों को 110 रुपए से 199 रुपए के बीच की किश्त देनी होगी और 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले किसानों को हर माह 200 रुपए जमा करवाने होंगे। अगर आवेदनकर्ता पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। तो हमारे वो किसान बहन भाई जो किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाकर के आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं रविंदर खालौर और उनके साथियों से एक रागनी।

रविंद्र खालौर और उनके साथियों द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी।
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
2: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
3: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाए।

0: टेक्निका, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: तो फिर क्या था सावित्री, सोने श्रृंगार करके और खान पीन का सामान रथ में धरवा के और सजीला रथ जुड़वा के दोस्तों चालन की तैयारी करती है, तो उसकी सखेरी सखी सहेली चौगिरदे से उसे घेर लेती हैं। भला कैसे सावित्री को कहती हैं, सावित्री इतना ख्याल करना कि वर ऐसा हो जो तेरी जोड़ी के काबिल हो।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

मेहरबानो, ये सब कुछ विश्वामित्र खेल खेल रहा था। जहरी नाग बन के रोहतास रच लिया और आज फिर मालन का भेष भर के रामलाल की बस्ती में पहुंच गया। तो किस तरह से रोहतास की मां ने मालूम पड़ी दोस्तों, बेटे के बैराग में और बागीचे में पहुंच गई तो कैसे

ये प्रोग्राम चंदा केसिट के वास्ते आप लोग सुन रहे हैं, जिसमें मास्टर हंसराज, दादा रिशाल, लश्करी जी, पंसूरी वादक जगदीश सिंह और हमारे कोशिंदर और ऋषिपाल

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत महिलाओं से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, उनके हक की बातें हो रही हैं और उन्हीं के संबंध में लगातार बातें हम यहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी क्रम में हमें दूसरे स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है। आइए अब हम सुनते हैं 90.4 MHz सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेवल वाणी द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम के अंतर्गत ये श्रृंखला।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ममता। हिंसा को नो के एक और नए भाग में आपका स्वागत है।
1: और मैं हूं पूजा।
0: अरे पूजा जी, आज आप इतने लेट कैसे हो गए? क्या बात, सब ठीक तो है ना?
1: हाँ ममता जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर
0: क्या, कुछ तो बात है जिसे आप बोल नहीं रही हो।
1: बात ये है कि आज हमारे गांव में महिला मंगल दल की बैठक थी जिसमें सभी महिलाओं को आना था और मैं भी वहीं जा रखी थी।
0: पूजा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को आगे बढ़ने और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इस प्रकार की बैठकें होना बहुत जरूरी है। लेकिन पूजा जी, आज की बैठक में आपने किस मुद्दे पर बात की?
1: ममता जी, मुद्दे तो बहुत थे, पर आज हमारे दल की एक मुख्य सदस्य उस बैठक में देरी से पहुंची, जिससे बैठक देर से शुरू हो पाई।
0: वैसे क्या क्या बातचीत होती है आपकी इस महिला मंगल दल की बैठकों में? कोई परिणाम भी निकलता है या नहीं?
1: परिणाम तो निकलता है, पर कल की बैठक में जो भी हुआ मैं आपको सुनाती हूँ। कल जब मैं बैठक में पहुंची तो
2: मीटिंग शुरू होने वाली है। अरे बैरफण की जाग जाग हम खड़े हो, बैठो बैठो, मीटिंग शुरू होने दिया। अपनी गपी घर लगाने, हम गपी लगाना हुई तो कट गई मीटिंग तो हुई। चलो तो चलो मीटिंग शुरू कर दो, बाद में लगो लगा।
3: पर दीदी, अभी तो हमारा संगठन की सचिव भी मतलब दीदी तो पहुँची नहीं ना।
2: आ जा ले जा, कोई बात नहीं, मैंने फोन कर तो वही तही वही बोले लग भी
4: भाई। वो तो अजय तैयार भी नहीं थे, वही वो आउंदी अभी तुम तही।
2: रोशनी यन कर यार, तू ही लियो बोले सब वो काम हो भाई, तब काम तो निपटो लो।
3: हाँ जानो दीदी, फटाफट गए थे मैं, तब देख लो। सिमनयान जट जी,
5: सिमनयान बोले, सिमनयान खूब राजी खुशी तुम?
3: सब ठीक है, राजी खुशी तुम खूब है यार?
5: हाँ, घर में बच्चा लोग सब ठीक है?
3: सब ठीक है जी दीदी, और खूब है?
5: हाँ सब बढ़िया। और की क्या बोल रहा, आज कने आन हुए तुम्हारो?
3: बस आज महिला मंगल दल की मीटिंग थे ना इच्छे।
5: अच्छा।
3: तो दीदी आई नी सरासर, तो अध्यक्ष दीदी ने बोली कि तू लियो बुलेगा सरासर, तब आयो बो तो मैं जान क्या पता भूल गई हूँ कखन बिमला दीदी यार
5: बोली ताकि फोन बोल कर भीतर फोन कुछ कर लगी।
2: हेलो रोशनी, तू देख ही मैं गई, मैं तो आने तो लगी हूँ।
3: हाँ सेमनयान दीदी,
2: सेमनयान
3: तुम आई नी सरासर, तब दीदी ने बोली कि जब तू ही लियो बुले ती।
2: ठीक है ठीक आई गयी मैं,
3: तो वहाँ तो फटाफट गई तैयार, तब गए चल जाओ।
2: हाँ हाँ तैयार हूँ मैं, लगी हूँ। सुना नहीं सुन लगे?
5: हाँ।
2: अरे मेरे खानो बनायू, और अगर मैं थोड़ी देर में जाली तो खे कर आंदी मैं खानू, मैं मीटिंग में जाऊँ।
5: मीटिंग में तेरे क्या काम था? मीटिंग में तू नहीं जेल तू, मीटिंग नहीं होने क्या? बस जनानियों कुछ काम दाम रही नहीं, टाइम पास करना हो तो मीटिंग कर लिया बस, और कर लिया मीटिंग में अपना घरों की बुराई।
3: अरे जेठ जी, तुम तो यह नहीं बोल लगे की बिमला दीदी तो सचिव बनवा, उनको जानू तो बहुत जरूरी, और वह भी मीटिंग में पहली देर होगी।
5: अरे सचिव सचिव तो यह बोल लिया, विधानसभा सचिव बोली, घर परिवार सामान छोड़ा ली और चली इन जनानी मीटिंग करने।
2: क्यों तुम तन बोलने गया, क्यों है तुम सने है? हम तो सब इकट्ठे हुए थे, एक दूसरे की मदद कर दो, सुन दो की परेशानी तो है, और जो हमारे पैसा इकट्ठे करे वो कहते कभी मदद की जरूरत हो जान दी, कभी कोई हिसाब हम तक करना पड़ दो, वह की खाते जानी नहीं मैं तब।
5: घरों के हिसाब करने तो आऊं नींद, और बड़ी आई तक मीटिंग का पैसों हिसाब कर दारी।
2: इतना पढ़ू लिखी तो छंदी हो मैं, क्या हिसाब कर दो लो, अकन घर को हिसाब नहीं जान
5: दी। नहीं जान तो नहीं जानी,
2: मैं तो जानी
3: दीदी तुम्हारे घरों को मामला, मैं तो चल दूं भाई। ऐसा कले तुम तो ऐ जान सबू की सहमति चाहिए रुपयो निकालने में, तुम्हारा सहन होना भी जरूर है ना?
2: हाँ आऊं दो आऊं, मैं कोशिश कर दूं तब। हले रोशनी, तू तो बिमला लेन गए थे, का गई वा?
3: अरे दीदी वो जेठ जी मनान बोध उनते करना कौन लग्या
2: किलाई?
3: अरे वो यनन बोध बोल लग्या कि सुधी जनानियों की बेकार की बैठक है, सुधी टाइम पास करने खातर।
2: रोशनी भेजवा लेना,
3: सही बात है,
2: जरूरत के टाइम पर नहीं बनी। यह तो बहुत गलत बात है, वही दूर तो यून कत नीचे बोलू। अरे भाई जनानियों को पूर्व हक है समाज में जी, यन कर दो सब महिलाएं इकट्ठी होने रहूं, घर पर चल दूं पहले।
3: हां चल चल चल
2: अभी चलो
6: चलो
3: चलो भाई फटाफट कह दे।
6: चलो जल्दी चलो बैठा काज नहीं तो भोग हो जाली, लेकिन पहले अब रुक जान जरूरी है। बिमला ते पूर्व हक की वो अपने इच्छा के अनुसार काम करो, वही नपुर समय कख देन कन देन वही की आजादी वही चाहिए।
4: चलो दे दीदी चला बैठा काज, फिर बिमला दीदी के घर पर हो लेकिन ठीक ने।
3: हाँ ठीक है
6: ठीक है।
5: अरे अरे कख चली पूरी टोल आज
6: तुम्हारे सवालों के जवाब दियोर जी हम दे दियो। पहले बिमला ते बैर बुला।
5: ठीक भाई मेरे घर चाहिए, मैं ते पूरे हक छे जानो को कि मेरा घर में चलने क्या लगी हूँ। मेरे नौने जटवानिया कौन जो तुम सब आएगी बात खान।
6: हाँ हाँ दियोर मैं ते पता तुम्हारे घर आई हूँ, लेकिन यान बतावा बिमला घर का खा वही ते मिल का क्यांग था जाना मुन।
5: अरे कहीं बात है भाभी जी तुम कर लगे वही को घर भी है जो मेरे घर छे।
6: फिर यान बतावा की वही की जिंदगी को फैसला करने वाला तुम कुए, वही अपनी जिंदगी में क्या कन कन कन तुम कुए बोल रहा बुरु लग दू ना जब अपनी चीज पर कोई है को हक जताओ।
5: अरे भाभी जी तुम कहीं बात कर लगे घर वालों मैं उनको और यहाँ का साथ साथ मुखिया भी मैं ये घर को और यहाँ को मैं तो अच्छा नहीं लगता कि बिमला यानी मीटिंग में जाओ और अपना समय बर्बाद करो।
6: ये दियोर तुम तो कने पता कि समय की बर्बादी होनी कि सही उपयोग होनी। तुम आए कभी हमारी मीटिंग में मुझे पता तुम से क्या कर दो।
5: मैं तो क्या पता कि तुम क्या कर दे
6: तब कने बोलना तुम की समय बर्बाद होनी
5: है। औरतों की बैठक में मर्दों को लग क्या काम।
6: अब फिर औरतों का काम मुझे मर्दों की दखल अंदाजी कने होंगी और एक घर का मुखिया होने बात कहन बताए तुम ते है कहन बोल तुम ते कि आदमी तो ही घर का फैसला लेना चाहना जबकि परिवार की सेट जिम्मेदारी महिला संभाल लगी।
5: हलिया ये मैं बोलने वाई क्या बात है बरसों वेटरनरी चली गए आदमी ही घर को गार्जियन होंदो और घर का सारा फैसला आदमी तो ही लेना चाहना जनानियों का बस ये बात नहीं है।
6: बरसों बेटी तो हम गाड़ियों पर भी नहीं घूमता था या जो जींस पहरी के तुम घूमना ये मैंने पैर था पहली बेटी। तुम्हारी बेटी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगी यो भी कख तो बरस पहले है ये तो हमारा समाज की देन यो हमारो पुरुष सत्तात्मक समाज महिलाओं ते अगवाड़ी बढ़ने ही नहीं देंदु। पर अब जब सब चीज में बदलाव छे तो हमारी सोच में कीक निभाई बदलाव हूँ।
5: आप बोल के चाहनी कि मैं अपना घर का फैसला न लियूं अपना परिवार का फैसला बिल्कुल न लियूं।
6: मैं यू बोल चाहनो हर कहते अपना जीवन को फैसला लेने को हक छा चाहे महिला हो या पुरुष और जब तक एक महिला ते हम का निर्णय लेने को हक नहीं देला तब तक वो आगने कने बढ़ी। और दियोर जी तुम तो पढ़िया लिखिया ही और तुम भी यानी सोचते बढ़ावा देला तो हमारा देश की महिलाएं अगाड़ी कने बढ़ ली।
5: क्या भाभी जी आप भी एक बैठक की बातें अपन कखन कख पहुँचा।
6: बात केवल बैठक की नहीं दियोर जी हमारा समाज की सोच की और ये सोचते बदलने की बहुत जरूरत छे और इते आप और हम जन लोग ही बदल सक दो तभी हमारो समाज एक महिला तय सम्मान भी दे लू और उनका महत्व तय भी समझ लू।
0: ओहो पूजा जी इस बैठक में तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तो केवल समय बर्बाद हुआ है। और पूजा जी यहाँ तो एक बात निकल कर आई है कि महिला का जीवन पुरुषों की रजामंदी पर निर्भर रह गया है जो हिंसा ही कहलाई जा सकती है।
1: हाँ और इसका सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम ही से समाज का निर्माण होता है।
0: जी बिल्कुल और आज भी घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित है और उनको जिस तरह हिंसा का सामना करना पड़ता है वह हमेशा शारीरिक ही नहीं होता बल्कि हिंसा और भी अन्य प्रकार की होती है।
1: जी ममता जैसे कि मारपीट गाली गलौज मारने की धमकी आत्महत्या करने पर उन्हें मजबूर किया जाता है, बिना इजाजत के कहीं जाने की अनुमति नहीं दी जाती और साथ ही महिलाओं को सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में शामिल होने के लिए जदोजहद करनी पड़ती है।
0: साथियों हमारे समाज में महिलाओं का शैक्षिक स्तर भी न्यूनतम है और उसका कारण हमारे समाज की मूर्खतापूर्ण मानसिकता है। लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है और उनके दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि तुमने सिर्फ चूल्हा चौका और घर की जिम्मेदारियां ही संभालनी है और पराए घर जाना है, तुम क्या करोगी पढ़ लिख कर, इसलिए घर के कामों में हाथ बटाओ।
1: तो बचपन से इन्हीं सब बातों को सुनती आई लड़की भी यह मान बैठती है कि वो इन चीजों के लिए ही बनी है और इन सब कारणों की वजह से उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है।
0: दोस्तों महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का एक और कारण ये भी है कि हमारे समाज में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर समझा जाता है और कहा जाता है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं कर पाएंगी, ये महिलाओं की बस की बात नहीं है।
1: और इन सब की शुरुआत होती है हमारे घर से जहां पर बचपन से ही लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है और ये सब बातें कहीं सुनाई और सिखाई जाती है।
0: इसके साथ ही घरेलू हिंसा के और भी अन्य कारण हैं जैसे साथी के साथ बहस करना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना और कुछ मामलों में महिलाओं में मातृत्व की कमी भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हिंसा का कारण बनता है।
1: और कहीं कहीं तो परिवारों तथा समुदायों में झगड़े का बदला महिलाओं के साथ हिंसा के रूप में भी लिया जाता है।
0: हमारे समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं और न जाने कितने ही ऐसे घरेलू हिंसा के कारण हैं। श्रोताओं, आज भी विज्ञान के इस युग में महिलाओं के जीवन में संघर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं।
1: तो दोस्तों, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में सुनते हैं नारी शक्ति पर आधारित एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, उम्मीद है कि आपको गाना जरूर पसंद आया होगा। और बस अब हम यही कहना चाहेंगे कि हमें अपने समाज को बदलने में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना ही होगा, तभी हमारा समाज एकदम तो नहीं पर धीरे धीरे जरूर बदलेगा।
1: तो दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही, तो दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेवलवाणी द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर। ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। सुनो शारदा 90.8 FM आप सबसे अपील करता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और हिंसा को नो कहना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
3: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
2: वो
3: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
4: क्या हुआ बेटिया?
5: डॉक्टर साहब,
6: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
7: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
3: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
5: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा।
6: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
8: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

अभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान। उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पसंदली बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शुरुआती 2 साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे, सुने, जाने, समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
2: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ

आपके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरो साधन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। सुनते हैं आज का विचार जो हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी में हमेशा ऐसे चलिए जैसे आपको कुछ नया सीखना है और आप जरूर सीखेंगे।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर विचार के लिए। बहुत सही फरमाया आपने। अब इसी बात पर सुनिए अंग्रेजी में एक कथन।
2: नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। ये कथन है 20वीं शताब्दी के महान भौतिक विज्ञानी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
3: जी, और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद, कुमारी पुष्पांजलि और स्वप्निल कुमार निषाद जी का।
2: अकोला महाराष्ट्र से राजेश कारिया
3: और ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
2: शास्त्री नगर बीड शहर महाराष्ट्र से किशन सपकाल
3: और मध्य प्रदेश सतना से प्रहलाद सिंह।
2: धन्यवाद आप सबको संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से संदेश भेजते रहिए।
3: तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपकी हमारी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। जैसा कि आप जानते हैं श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के संविधान की।
2: अब तक हमने जाना संविधान सभा, अनुच्छेदों, अनुसूचियों, उसकी आत्मा और उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, और अब लेते हैं आगे की जानकारी। फिर आया 26 जनवरी 1950 का ऐतिहासिक दिन।
3: यही वो दिन था जब भारतीय संविधान आधिकारिक रूप से देश भर में लागू हुआ और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। ये वो दिन था जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया और विश्व के सामने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा।
2: हमारा भारतीय संविधान न केवल हमारे कानूनी अधिकारों का संरक्षक है बल्कि ये हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समानता और न्याय का प्रतीक है।
3: श्रोताओं, ये हमारा संविधान ही है जिसके दिशा निर्देश में हम केंद्रीय, राज्य सरकारों और स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करते हैं। हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि इसने सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं वाले विशाल भारतीय समाज को एकजुटता और समानता के सूत्र में बांधा। यही हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत बात है।
2: भारत का संविधान हमारे देश का मूल कानूनी आधार है। ये सभी नागरिकों और संस्थाओं के लिए समान अवसर, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करता है।
3: ये जानना सुखद होगा श्रोताओं कि भारत का संविधान हस्तलिखित है। इसे हस्तलिपि विशेषज्ञ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा। बाद में इसे टाइप कराया गया। इसकी मूल प्रति में प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में आकर्षक कलाकृतियां हैं। इन कलाकृतियों को कलात्मक ढंग से बनाया था श्री नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। वे शांति निकेतन के कार्यकर्ता थे। संविधान पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में लिखा गया।
2: और ये जानना भी रोचक होगा कि भारत के संविधान की मूल प्रति में पन्ने साधारण कागज के नहीं हैं, वे पार्चमेंट पेपर पर लिखे गए हैं जो बहुत टिकाऊ होते हैं। संविधान की मूल प्रति को हीलियम गैस से भरे हुए एक विशेष केस में संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया है ताकि नमी, कीटाणु और ऑक्सीकरण के कारण ये खराब न हो जाए।
3: श्रोताओं, भारत के संविधान की आत्मा है इसकी प्रस्तावना जिसकी शुरुआत में लिखा गया है हम भारत के लोग, जिसका अर्थ है जनता ही सर्वोपरि है।
2: तो ये थी जानकारी आज के लिए हमारे संविधान की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
3: भारत के संविधान की मूल प्रति को कहाँ रखा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारत के संविधान की मूल प्रति को कहाँ रखा गया है?
3: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर
2: और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
3: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा आज का पहला कार्यक्रम है आउट इन द गार्डन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है जिसमें बताया गया है कि बच्चे आनंद पूर्वक एक सुंदर बगीचे में प्राकृतिक वातावरण में खेलते हैं, पेड़ पौधों और फूलों की सुंदरता को निहारते हैं, धमा चौकड़ी मचाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। वे अपने मित्रों को भी आमंत्रित करते हैं कि वे उनके साथ मिलकर खेल और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें।
3: Let's recite the poem with children. Out in the garden each fine day.
4: Out in the garden each fine day. With my ball, I like to play.
5: With my ball, I like to play.
4: I bounce my ball, I throw my ball.
5: I bounce my ball, I throw my ball.
4: I catch my ball on each fine day.
5: I catch my ball on each fine day.
4: Out in the garden, each fine day.
5: Out in the garden, each fine day.
4: With my kite, I like to play.
5: With my kite, I like to play.
4: I tug my kite, I pull my kite.
5: I tug my kite, I pull my kite.
4: I fly my kite on each fine day.
5: I fly my kite on each fine day.
4: Out in the garden, each fine day.
5: Out in the garden, each fine day.
4: With my friends, I like to play.
5: With my friends, I like to play.
4: We run and skip.
5: We run and skip.
4: We jump and sway.
5: We jump and sway.
4: We slide and swing.
5: We slide and swing.
4: On each fine day.
5: On each fine day.
3: And now, we bring to you the song of this poem.

0: run and skip, we jump and swim, we slide and swing on each fine day.
1: Dear children, you were just listening to this program, Out in the Garden. Hope you have liked it. It's always very exciting and refreshing to be in the garden, isn't it? As we have just heard children sing, they are not only enjoying the beauty of the garden, but also they are playing with great joy. Now, just a question. How often do you visit a garden or go outside in fresh air? You know, being in fresh air and playing keeps us fit and healthy. अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत आउट इन द गार्डन, और अब बारी है अगले कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है मेजर शैतान सिंह।
2: इस कार्यक्रम में मेजर शैतान सिंह के पराक्रम और शौर्य की चर्चा की गई है, और बताया गया है कि भारत चीन युद्ध के समय उन्होंने कितनी वीरता से चीनी सेना का मुकाबला किया और उनके हौसले पस्त कर दिए। युद्ध में अपनी अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए वो शहीद हो गए, जिसके लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ,
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा?
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ,
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: हाँ, जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: चलो बता देते हैं।
3: जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
4: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
3: जी सर।
4: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
3: जी सर।
4: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
3: जी सर।
4: जय हिंद।
3: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रही। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: दरअसल चीनी सैनिकों को मालूम हो गया था कि भारतीय सैनिकों के पास गोलियां बहुत कम मात्रा में हैं। इसलिए वो चाहते थे कि भारतीय टुकड़ियों के पास रही सही गोलियां भी समाप्त हो जाएं। जानवरों को भेजकर वो भारतीय सेना की स्थिति और प्रतिक्रिया का भी पता लगाना चाहते थे।
0: लेकिन भारतीय कमांडर ने अपनी सूझबूझ से टुकड़ी के कारतूस बचा लिए। ये कमांडर कोई और नहीं, मेजर शैतान सिंह थे, जिन्हें भारत चीन के युद्ध में अपूर्व शौर्य दिखाने पर मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: एक दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए।
1: अपने स्कूल और कॉलेज के जीवन में वो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद उन्हें भारत संघ की कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया।
0: अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो, तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर! फायर! कालिका माता की
3: जय!
2: भारत माता की
3: जय!
2: फायर!
3: आगे बढ़ो।
4: साहब, साहब वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
5: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो
3: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
4: जी सर।
0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया। रेजांगला घाटी में भारतीय सेना की दो चौकियां थीं। मेजर शैतान सिंह बारी बारी से दोनों चौकियों में चीनी सैनिकों की भीषण गोलीबारी के बीच बिना सुरक्षा के भाग भाग कर जाते और बचे हुए सिपाहियों का हौसला बढ़ाते।
2: राम सिंह, नीचे हो, नीचे। डक्कर, फायर को डक्कर।
4: जी सर,
2: मैं लोड करता हूँ। उधम सिंह।
4: जी सर।
2: एलएमजी संभाल, राइफल छोड़, फायर कर। राइट साइड पे फायर कर।
1: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
4: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं। कितना खून बह रहा है। आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
5: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ।
4: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
2: अच्छा।
4: सर, यही मशीन गन।
5: हुकुम सिंह, एक काम करो।
4: जी।
5: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर।
5: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को।
4: जल्दी करो।
5: जी सर।
4: बांध दिया सर।
5: ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ।
4: हाँ सर, बांध।
5: इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो। जल्दी टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ लेके। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर।
5: ठीक है। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
4: संभल कर।
5: सब यहां सर टिका लीजिए।
4: सर आराम से।
6: कालिका माता की जय।
0: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
6: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
0: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया,
6: साथी हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
4: साहब,
6: तुम लोग आगे निकलो।
4: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
6: नहीं, नहीं, बात को समझो, अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
4: नहीं साहब,
6: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
4: नहीं साहब,
6: नहीं, नहीं, आदेश, इट्स एन ऑर्डर
4: सर।
6: जाओ, अलविदा, अलविदा दोस्तों, अलविदा भारत माता की।
1: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेस

0: सियांगला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे, उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
1: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
2: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
1: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
0: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांग ला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: संग्राम के इस महानायक को हमारा शत शत नमन। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अजीत को आज्ञा दीजिए
3: और उमंग की तकनीकी टीम के साथ विमलेश को भी नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
1: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
0: क्या है राज?
1: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
2: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: भाभी लो मिठाई खाओ।
2: अरे किस खुशी में?
1: सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
2: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
1: ओहो भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
2: अनीमिया?
3: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: ललिता लो मिठाई खाओ।
1: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
4: आओ बनाए अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

धरती मेरी धरती नीचे प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 22वीं कड़ी धरती पे उतरते बादल। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने हवा में नमी के बारे में जाना। जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदियों व झीलों से सूरज की गर्मी द्वारा जल भाप में बदलता है। ये भाप या नमी हवा की उमस को बढ़ाती है। धरती पर पानी एक जल चक्र के माध्यम से समुद्र से हवा में व हवा से पुनः समुद्र में मिलता रहता है। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 22वीं कड़ी।

0: मानव के लिए मम्मी।
1: अलार्म से कहाँ उठने वाला है मानव, उसे तो जब तक चार पांच आवाजें ना लगाओ उठता ही नहीं है वो।
2: अरे मम्मी आवाजें तो आप देती होंगी, हम तो बस उसके चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं और अपने आप उठ जाता है मानव।
1: सृष्टि ये तो बताओ मानव आज इतनी सुबह क्यों उठ रहा है भला, अभी तो परीक्षा के दिन दूर है ना।
0: अरे मम्मी आज से मानव भी हमारे साथ सुबह की सैर पर चलेगा।
1: अच्छा ये तो अच्छी खबर है, सैर के बहाने मानव सुबह जल्दी तो उठेगा कम से कम।
0: वो भी बिना आवाज लगाए। ओ लगता है मानव उठाया, देखो
2: लो वो आ रहा है हमारा मानव।
3: गुड मॉर्निंग मम्मी।
1: गुड मॉर्निंग बेटा। अरे आज तो कमाल हो गया, मानव बिना किसी के जगाए सिर्फ अलार्म से उठ गया।
3: हाँ मम्मी सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए मैंने अपनी एक आदत बदल दी है।
0: अच्छा किया मानव तूने, नहीं तो अभी विवेक भैया तेरे ऊपर पानी डालने ही वाले थे।
2: पर सृष्टि लगता है अब हमें फिर कभी मानव को जगाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों मानव?
3: हाँ भैया अब मैं सुबह उठने के लिए आलस नहीं करूंगा।
2: बहुत अच्छा,
1: चलो अच्छा है। एक अच्छी आदत डालने के लिए मानव एक बुरी आदत भी छोड़ना चाहता है।
3: दीदी पापा नहीं दिख रहे, क्या वो अकेले ही सैर पर निकल गए हैं?
0: नहीं मानव, पापा छत पर प्राणायाम कर रहे हैं, बस आते ही होंगे, हम सभी सैर पर एक साथ चलेंगे।
2: पापा के नीचे आते ही हम सैर पर चल पड़ेंगे।
1: लो आ गए तुम्हारे पापा भी।
3: गुड मॉर्निंग पापा।
4: गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। वाह भाई वाह, आज तो मानव भी सैर पर चलने के लिए तैयार है।
3: हाँ पापा आज से मैं रोज ही आपके साथ सैर पर चलूंगा।
4: वेरी गुड, तो चलो बच्चों चलते हैं पार्क की ओर।
3: चलो, चलो, चलो, चलो, चलो।

0: अरे वाह, मजा आ गया भाई।
1: अरे वाह, आज तो ऐसा लगता है जैसे बादल धरती पर ही उतर आए हो।
2: अरे मानव, ये बादल नहीं कोहरा है।
3: हाँ मानव, तू जिसे बादल समझ रहा है वो बादल नहीं कोहरा है।
1: अगर ये कोहरा है तो फिर बादल किसे कहेंगे?
4: मानव, कोहरा और बादल दोनों जल की नन्ही नन्ही बूंदों से बने होते हैं।
5: मानव, और ये जल की नन्ही नन्ही बूंदें हवा के साथ उठती और गिरती रहती हैं।
1: पर ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं?
3: अरे मानव, कोहरे और बादल की ये जल की नन्ही बूंदें वातावरण में उपस्थित भाप से बनती है।
1: लेकिन पापा, मुझे तो बादल और कोहरा एक ही जैसे लग रहे हैं।
4: बेटे मानव, ये एक समान तो नहीं, पर हाँ, तुम कोहरे को धरती की सतह के पास उतर आने वाले बादल भी कह सकते हो।
1: पापा, अगर कोहरा मतलब धरती के पास के बादल, तो बादल और कोहरा समान हुए ना?
4: अब नहीं बेटा मानव, कोहरा अचानक बनता है और तीव्रता से फैलता है। हाँ, कोहरे और बादल दोनों में समानता जरूर है कि ये हवा की नमी से बनते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए मुझे हल्की सी ठंड लग रही है।
2: अच्छा। मानव, ठंड तो लगेगी ही तुझे। सूर्योदय के बाद उठने वाला यदि सुबह 5 बजे सैर पर निकल जाए तो उसे तो अच्छा खासा मौसम भी ठंडा लगेगा।
1: अच्छा दीदी, मेरी तो तुम छोड़ ही दो। आपको तो 12 महीनों ठंड लगती है, तभी तो रोज गर्म पानी से जो नहाती हो।
5: भाई मानव, मुझे तो ठंड नहीं लग रही है, पर हाँ, इस कोहरे के कारण मुझे दूर की वस्तुएं साफ नजर नहीं आ रही।
3: मम्मी आप ठीक कह रही हैं, कोहरे के कारण हमारी आंखों को दूर स्थित वस्तुओं को साफ देखने में मुश्किल होती है।
4: हाँ भाई, कोहरा छाने से लोगों की देखने की क्षमता यानी विजिबिलिटी कम हो जाती है।
1: हाँ, कोहरा छाने पर हमारी देखने की क्षमता 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है, ऐसा मैंने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा था। अच्छा तो दीदी, और क्या क्या पढ़ा है आपने कोहरे के बारे में?
2: यही
1: कि कोहरा जब अधिक सघन हो जाता है तो धुंध कहलाता है।
2: धुंध? भला ये क्या बला है? गेहूं में घुन के बारे में तो मैंने सुना है, पर ये धुंध क्या होता है?
5: अरे मानव, ये धुंध है धुंध, गेहूं की घुन नहीं।
3: मानव, धुंध और कोहरे को तुम भाई भाई भी कह सकते हो, जैसे तुम और मैं।
1: मैं कुछ समझा नहीं भैया।
4: मानव, कोहरे की तुलना में धुंध में जल की नन्ही बूंदों की संख्या अधिक होती है। या यूं भी कह सकते हो कि सघन हो जाने पर कोहरा ही धुंध में बदल जाता है। और बच्चों, अब देखो, आज तो बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि कब हम पार्क तक पहुंच भी गए।
1: चलो, अच्छा हुआ पार्क इतनी जल्दी आ गया, मुझे तो चलते चलते बड़ी थकान हो गई थी।
4: हाँ, आदत नहीं है ना।
1: अब बैठने का मौका तो मिल ही जाएगा।
5: अरे मानव, पार्क में तुम आराम से बैठ भी सकते हो, बैठ जाओ।
1: पापा, वो देखो, घास पर मोती। अरे वाह।
4: बेटा ये मोती नहीं, ओस है।
5: हाँ मानव, घास पर दिखाई देने वाले ये मोती ओस की बूंदे हैं।
1: ओस की बूंदे, और वो भी इतनी चमकीली।
2: हाँ मानव, ये ओस ही है जो सूर्य की किरणों से मोती जैसी चमक रही है।
3: और मानव, इन ओस की बूंदों के पीछे भी हवा में समाई नमी की ही कहानी है।
1: अच्छा, तो भैया ये ओस भी जल की भाप यानी नमी का ही एक रूप है ना?
3: हाँ मानव, ओस भी पानी का ही बस एक और रूप है।
2: पानी का ही रूप है ओस, पर इतना सुंदर मानो मोती।
1: तब तो अच्छा ही है दीदी, पापा की जेब हल्की होने से तो बची जाएगी।
2: अरे मानव, ओस के बीच में पापा की जेब कहाँ से आ गई अब?
1: मम्मी, दीदी आपसे बहुत दिनों से मोती के हार की जिद कर रही थी ना?
5: हाँ कर तो रही थी, तो क्या?
1: अरे मम्मी, क्यों ना दीदी को इन मोती जैसी ओस की बूंदों का हार ही दे दिया जाए, इससे पापा के पैसे भी खर्च होने से बच जाएंगे। क्यों दीदी?
2: मानव, इन मोतियों का हार तुम ही पहनो।
3: वैसे भी मानव, ये ओस के मोती मानव के नहीं बल्कि हमारी धरती के आभूषण है, इन्हें हम क्यों ले?
4: हाँ मानव, विवेक सही कह रहा है, हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए धरती की सुंदरता को नष्ट नहीं करना चाहिए।
5: वैसे मानव, बहुत आराम कर लिया ना पार्क में आकर तुमने, अब घर की ओर चलें।
1: चले
0: चलो भाई, चलो जल्दी।
1: पापा, लगता है कोहरा छटने लगा है।
4: हाँ बेटा, धीरे धीरे देखो कोहरा कम होने लगा है।
3: मानव, दिन चढ़ने के साथ साथ हवा के गर्म होने पर कोहरा कम हो जाता है।
2: विवेक भैया, दिन चढ़ने के साथ साथ वाहनों की हलचल भी तो बढ़ने लगी है।
5: कुछ समय बाद वाहनों के शोर में पक्षियों के चहचहाने की आवाज दब जाएगी और सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न की आवाज ही सुनाई देगी। हाँ,
4: शोर ही नहीं, साथ में वाहनों से निकला धुआं भी प्रकृति की सुंदरता को ग्रहण लगाएगा।
2: और पापा, ये धुआं कोहरे के साथ मिलकर स्मोक को जन्म देता है। अरे दीदी, मैंने स्मोक तो सुना है, पर ये स्मोक क्या है?
1: मानव, स्मोक कोहरा ही है, लेकिन इसमें धुएं की मात्रा बहुत अधिक होती है।
3: बिल्कुल ठीक सृष्टि, स्मोक में कारखानों, वाहनों और आग लगने की घटना से निकला हुआ धुआं जल की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ मिल जाता है।
2: इस स्मॉग में विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो भैया, स्मॉग में देखने की क्षमता कोहरे से भी कम हो जाती है?
3: हाँ मानव, लेकिन स्मॉग कोहरे की अपेक्षा अधिक हानिकारक है।
2: वो क्यों? मानव, स्मॉग में धुएं की अधिक मात्रा हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है। तब तो ये स्मॉग बहुत खतरनाक हुआ।
3: हाँ मानव, स्मॉग इंसानों और पेड़ पौधों दोनों के लिए बहुत बुरा है।
4: बच्चों, कोहरे की तुलना में स्मॉग बहुत दिनों तक छाया रहता है।
2: हाँ, यदि हवा में धुएं की मात्रा बहुत अधिक हो तो स्मॉग लंबे समय तक छाया रहता है।
3: और स्मॉग की वजह से रोड एक्सीडेंट भी होते हैं।
2: स्मॉग से विजिबिलिटी जो कम हो जाती है।
5: क्या बच्चों, सुबह सुबह एक्सीडेंट की बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने। हाँ, ये समय तो प्रकृति की सुंदरता को निहारने का है।
3: हाँ मम्मी, धरती की सुंदरता के साथ आकाश की लालिमा भी मनमोहक लग रही है।
2: सच, आसमान से धरती तक छाई सूर्य की लालिमा और पक्षियों का कलरव बड़ा मनभावन है।
1: हाँ, तो दीदी तुम यहीं पर बैठ के यहाँ की लालिमा को देखो और मैं अकेले ही टीवी देख लूंगा, ठीक है?
2: चलो चलो चलो
5: चलो, करने से बाज नहीं आते तुम लोग, चलो।
2: आज की सैर काफी अच्छी रही है ना, समय का पता ही नहीं चला।
3: हाँ, और मानव तुम्हें कैसा लगा आज?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लगा भैया, अब तो मैं रोज आप सबके साथ सैर पर जाया करूँगा।
5: हाँ, अब हमारे मानव ने जल्दी उठना जो सीख लिया है।
2: वो भी आपके बगैर मम्मी।
5: मतलब
2: पहले मानव को जगाने के लिए आपको उसे 3-4 बार आवाज देनी पड़ती थी, अब मानव अपने आप उठने की आदत डाल रहा है। मम्मी
1: मम्मी वो तो ठीक है, पर पापा फोन पे किससे बातें कर रहे हैं?
2: अरे मानव, ये तो पापा ही बता सकते हैं ना, भला मम्मी को क्या पता कि पापा किसके साथ बात कर रहे हैं।
4: ठीक है। अरे भाई, अभी अभी मेरे कानपुर वाले दोस्त राजीव का फोन आया है, वो बस अभी 8 बजे की ट्रेन से आ रहा है।
5: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है।
1: हाँ। तो पापा, राजीव अंकल वही है ना जो कानपुर के केंद्रीय विद्यालय में साइंस टीचर है?
4: हाँ, लेकिन बेटे उन्हें लेने रेलवे स्टेशन जाना होगा, उन्होंने हमारा ये नया घर अभी तक देखा नहीं है ना।
3: तो इसमें क्या परेशानी है पापा, उन्हें लेने हम चले जाते, आप आराम से अपने ऑफिस जाइए।
4: पक्का?
3: पक्का।
4: अब तो ठीक है विवेक, और तुम मानो तुम भी दोनों जने साथ चले जाना, ठीक है? लेकिन हाँ, याद रखना ट्रेन ठीक 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ जाएगी।
1: अरे वाह, आज तो दिन भर बाहर घूमने का प्रोग्राम
3: अरे
1: है।
3: मानो तेरे तो मजे। अच्छा मम्मी, हम लोग स्टेशन जा रहे हैं फिर?
5: हाँ बिल्कुल, लेकिन ध्यान से जाना बेटा। हाँ।
1: जल्दी चलो ना।
4: चलो भाई,
5: ध्यान से।

0: जो मेरे साथ
1: राजीव
2: नमस्ते अंकल।
3: नमस्ते नमस्ते बच्चों, और घर पर सब ठीक ठाक है?
2: अंकल घर पे सब कुछ ठीक है।
1: अंकल फटाफट घर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं टैक्सी लेकर आता
2: हूँ। आइए अंकल आप मेरे साथ।
3: चलो भाई बच्चों, यहाँ का मौसम तो काफी अच्छा है।
1: हाँ अच्छा है अंकल, हल्का हल्का फॉग यानी कोहरा नजर आ रहा है।
2: अंकल कहीं ये कोहरा स्मॉग में तो नहीं बदल जाएगा ना?
3: अरे वाह, मानव तो बहुत कुछ जानता है। पर मानव यहाँ इतना प्रदूषण थोड़ी है।
1: अंकल

0: स्मॉग ना सही, लेकिन ये अन्य कोहरे में तो बदल सकता है।
1: हाँ विवेक, मौसम के हिसाब से अब विकिरण फॉग यानी रेडिएशन कोहरा तो बन सकता है, क्योंकि ये रात के समय आकाश के साफ होने पर ही बनता है।
2: अच्छा, तो अंकल इस कोहरे को भी साफ सफाई पसंद है। साफ आसमान होने पर ही विकिरण कोहरा बनता है। पर ये विकिरण कोहरा बनता कैसे है?
1: मानव, ये कोहरा धरती का तापमान कम होने पर बनता है। और हाँ, विकिरण कोहरा कभी भी पानी की सतह पर नहीं बनता। हाँ विवेक, तुम अन्य प्रकार के कोहरों के बारे में जानते हो?
0: जी अंकल। अंकल मैंने एडविक्शन यानी अभिवाहन कोहरे के बारे में भी सुना है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ विवेक, बिल्कुल। एडविक्शन या अभिवहन कोहरा उस समय बनता है जब कोष्ण और नम ठंडी हवा धरती पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, कभी कभी ये कोहरा पहले से बने कोहरे के स्थानांतरित होने पर बनता है।
2: तो आपका मतलब ये है कि एडविक्शन कोहरा दूसरों का स्थान हथिया लेता है?
1: बिल्कुल।
0: हाँ, ये तो ऐसा ही हुआ, एक कोहरा खत्म हुआ तो दूसरा हाजिर।
2: अंकल, क्या कोहरा समुद्र के ऊपर भी छाता है?
1: देखो मानव बेटा, सागर की सतह के ऊपर भी कोहरा छाता है, जिसे समुद्री कोहरा या समुद्री धुआं भी कहा जाता है।
0: अरे मानव, तू तो कोहरे के पीछे हाथ धोकर पड़ गया।
1: अरे अच्छा ही है ना विवेक, मानव की कोहरे के प्रति जिज्ञासा से मुझे भी अपने स्कूल के छात्रों की याद आ गई। अरे भाई, वो भी मुझसे इतने ही प्रश्न पूछते
2: हैं। देखा?
0: अंकल घर आ गया।
1: हाँ।
0: अब देखिए।
1: अरे बेटे, घर आप लोग ने चेंज?
0: जी अंकल, आइए आइए।
3: नमस्ते भाई साहब।
1: नमस्ते भाभी जी। नमस्ते।
3: आप बताइए, सफर कैसा रहा?
1: अब रेल का सफर तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन भाभी ये विवेक और मानव के साथ रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का सफर काफी अच्छा था। हाँ।
3: विवेक, अंकल को कमरे में ले चलो।
0: जी।
3: तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ।
0: आइए अंकल।
1: हाँ, चलो बेटा।
4: अब बेटा ये सामान यहाँ रखो।
0: जी जी।
2: दीदी, क्यों ना हम भी राजीव अंकल के पास चले।
3: चलो मानव, चलो।
1: अरे आओ बच्चों, आओ आओ आओ।
2: अंकल। हाँ? विवेक भैया कहाँ गए हैं?
1: मानव वो मेरे लिए पानी लेने गया है।
2: ओ।
1: वैसे अभी तुम्हारी ही बातें कर रहा था।
2: मेरी बातें?
1: हाँ, विवेक बता रहा था कि आज मानव भी पहली बार सुबह सैर के लिए गया था। अच्छा मानव, ये बताओ कि आज सुबह की सैर में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा?
2: मुझे तो धरती के पास के बादल बहुत अच्छे लगे।
0: लीजिए अंकल पानी।
1: अरे थैंक यू विवेक बेटा। अच्छा मानव, तो सुबह तुमने कोहरा देखा?
3: हाँ अंकल, कोहरे को ही मानव धरती के समीप वाले बादल कह रहा था।
1: बच्चों, तुम्हें ये पता है कि लगभग हर समय पृथ्वी का आधा भाग बादलों से घिरा रहता है?
2: अरे वाह, ये तो हमारे लिए एक नई जानकारी है।
1: बच्चों, बादलों की तो कई बातें अनोखी हैं।
2: आप कौन से बादलों की बात कर रहे हैं अंकल?
1: मैं उन सभी बादलों की बात कर रहा हूँ बच्चों, जो धरती की सतह से लेकर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक पाए जाते हैं।
3: अंकल, पृथ्वी पर ये बादल वायुमंडल की नमी के संघनन के कारण बनते हैं ना?
1: देखो सृष्टि, जब नम हवा ऊपर उठने के दौरान फैलती है तो ये ठंडी भी होने लगती है,
0: और इस प्रकार बादलों में जल की बहुत छोटी छोटी बूंदे बन जाती है।
1: बिल्कुल।
2: पर भैया, ये जल की बूंदे आसमान में स्थिर कैसे रह पाती हैं?
0: मानव, ये जल की बूंदे स्थिर नहीं होती, बल्कि हवा के साथ तैरती रहती है।
1: हाँ बच्चों, बादलों की नन्ही जल की बूंदे हवा के प्रतिरोध के कारण धरती पर नहीं गिरती।
3: और जब इन नन्ही जल बूंदों का आकार बड़ा हो जाता है, तब ये बारिश बन बरसती हैं।
0: बिल्कुल।
3: इसका मतलब बादल ना हो तो वर्षा भी नहीं होगी।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो मानव तुम।
2: मगर अंकल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही।
1: कौन सी बात बेटा?
2: ये तो मुझे समझ में आ गया कि बिन बादल बरसात नहीं होती, लेकिन फिर बिना बरसात बादल क्यों होते हैं?
3: वाह मानव, अच्छा सवाल किया तूने।
1: मानव ये तो तुम समझ ही गए कि सभी बादल वर्षा नहीं करते।
2: हाँ अंकल।
1: तो ये बात और जान लो कि बादलों को उनके आकार और ऊंचाई के अनुसार मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है, फिर प्रत्येक वर्ग में भी बादलों के अन्य प्रकार हैं। इस तरह से वैज्ञानिक 9-10 प्रकार के बादलों का अध्ययन करते हैं।
3: ठीक वैसे ही ना अंकल, जैसे गेहूं तो एक अन्न है, लेकिन सुजाता, लोकवान, पूसा गेहूं की किस्में हैं।
1: अरे वाह बेटा वाह, वेरी गुड।
0: सृष्टि, इसी प्रकार कुछ वैज्ञानिक बादलों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई के अनुसार, जैसे उच्च स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल और निम्न स्तरीय बादलों के रूप में करते हैं। तो कुछ लोग बादलों का अध्ययन धरती से दिखाई देने वाली बादलों की आकृति के अनुसार करते हैं। ठीक कहा ना अंकल मैंने?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक। देखो मुख्यतः बादल तीन प्रकार के होते हैं, पक्षाप बादल, स्तरी बादल और कपासी बादल।
0: और मानव, पक्षाप बादल यानी सीरस क्लाउड को उच्च स्तरीय बादल भी कहा जाता है।
3: अंकल, पक्षाप बादलों में हिमकण भी होते हैं क्या?
1: सृष्टि बेटा, पक्षाप बादल जल बूंदों व हिमकण दोनों से बने होते हैं। इन बादलों की ऊंचाई धरती से 5 से लेकर 14-15 किलोमीटर तक होती है। श्वेत रंग वाले पक्षाप बादलों की संरचना समानांतर लहरों की भांति होती है। और बच्चों, आमतौर पर पंक्तिबद्ध या समूह रूप वाले पक्षाप बादल आकाश का अधिकांश भाग घेरे रहते हैं।
3: अंकल, पक्षाप बादल के और भी उपवर्ग है ना?
1: देखो मानव, पक्षाप बादलों के समूह में पक्षाप कपासी और पक्षाप स्तरी बादल आते हैं। और बच्चों, पक्षाप स्तरी बादल तो तूफान का द्योतक होते हैं।
3: तो क्या अलग अलग बादलों के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं?
1: हाँ बेटी, इस भिन्नता के कारण ही तो इनको अलग वर्ग में रखा गया है।
0: और सृष्टि, जानती हो स्तरी या स्ट्राटस बादल तो पक्षाप बादलों के नीचे स्थित होते हैं।
3: फिर तो जरूर इन्हें मध्यम स्तरीय बादलों की श्रेणी में रखा गया होगा।
1: बिल्कुल मानव, स्तरीय बादलों की ऊंचाई धरती से 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक होती है। हल्के भूरे और श्वेताभ रंग के ये स्तरीय बादल मूसलाधार बारिश कर सकते हैं। बरसते समय इन स्तरी बादलों का रंग गहरा भूरा हो जाता है। और कभी स्तरी बादल आकाश में धुनी हुई रुई के समान भी दिखाई देते हैं।
0: अच्छा
3: अंकल, स्तरी बादल कितने प्रकार के होते हैं?
1: देखो मानव बेटा, स्तरी बादल तीन प्रकार के होते हैं, जो मध्य कपासी, मध्य स्तरी और वर्षा स्तरी बादलों के नाम से जाने जाते हैं। और बच्चों, तीसरे वर्ग में फूल गोभी के समान दिखाई देने वाले कपासी या क्यूमुलस बादल आते हैं।
0: और मानव, जानते हो झुंड में रहने वाले इन कपासी बादलों को आकाश में ब्लैक एंड व्हाइट रंग में देखा जा सकता है।
3: क्या भैया, बादल भी श्वेत श्याम रंग के होते हैं? अभी तक तो मैंने सिर्फ श्वेत श्याम रंग का टेलीविजन ही सुना था।
1: अरे बच्चों, ये कपासी बादल ऊंचे स्थानों पर तो कोहरे का आभास देते हैं।
3: अच्छा, तो अंकल, कपासी बादल धरती के सबसे समीप बादल हुए।
1: हाँ माना बेटा, और इन बादलों को भी मुख्यतः तीन उपवर्गों में, स्तरी कपासी बादल और कपासी वर्षी बादल में बांटा गया है।
0: अंकल, मैंने कहीं पढ़ा है कि हिमपात और टर्नाडो की घटनाएं कपासी वर्षी बादलों से होती है।
1: विवेक, हिमपात व टोर्नेडो के साथ ही बिजली चमकने की घटना भी कपासी वर्षी बादलों से होती है।
0: अच्छा
3: अंकल, जब मैं छोटा था तो ये समझता था कि भगवान बिजली चमकाकर ये देखते हैं कि कौन कौन भीगने से बच गया है।
1: ये मानव भी।
3: अच्छा तो मानव, अब जब बिजली चमकती है तब तुम्हें क्या समझ आता है? दीदी, एक दिन बिजली चमकने की सच्चाई मुझे विवेक भैया से पता चली कि बादलों से विद्युत विसर्जन से बिजली चमकती है, जो कि बादलों में उत्पन्न विपरीत आवेश के कारण होता है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: और मानव, विद्युत का चमकना एक घटना ना होकर कई घटनाओं का एक जटिल क्रम होता है।
1: अच्छा बच्चों, तुम्हें बादलों से संबंधित अगर कोई मुहावरा याद हो तो मुझे बताओ।
3: हाँ अंकल, बादल से संबंधित मुझे एक मुहावरा याद है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है।
1: वाह मानव वाह, वेरी गुड, यही मुहावरा तो मैं सुनना चाहता था।
3: हाँ अंकल, ऐसा क्या खास है इस मुहावरे में?
1: मुहावरे में नहीं बेटा, बल्कि मुहावरे में छिपे बादलों की गड़गड़ाहट में विशेष बात है। देखो बच्चों, गरजने वाले बादल बरसें भी ये जरूरी नहीं, और बारिश तो तभी होती है जब बादलों में पानी की बूंदों का आकार बरसने लायक हो जाए।
3: हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन ये बादल गरजते क्यों है?
1: बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ बादलों के गरजने का राज। देखो, बादलों से विद्युत विसर्जन होने पर जब समीप की हवा बहुत अधिक गर्म होकर तेजी से चारों ओर फैलती हुई आसपास की ठंडी हवा से टकराती है, तब जो गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है उसे ही बादलों का गरजना कहा जाता है।
0: अच्छा,
3: लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज तो विद्युत चमक के काफी देर बाद सुनाई देती है।
0: वो इसलिए मानव, कि प्रकाश की गति की तुलना में ध्वनि की गति काफी कम होती है, इसी कारण हमें पहले विद्युत की चमक दिखाई देती है और फिर बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है।
1: अरे वाह विवेक, वाह एक्सीलेंट। बच्चों विवेक की सही जानकारी के लिए क्यों ना तालियों की गड़गड़ाहट।
4: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 22वीं कड़ी सुन रहे थे, धरती पे उतरते बाद।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: सारे शहर में नाम तुम्हारा दीवारों पे लिखता है।
4: टाइम नहीं है सबके लिए, सबके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। मैं एक अच्छा सोल्जर बनना चाहता हूँ।
5: किसने रोका है?
3: सारे

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें। टीबी हारेगा, देश
3: जीतेगा। हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जब टीचर हमारी क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो जब हम उसके बारे में पता करते हैं और अगर हमें पता चलता है कि उस बच्चे को बुखार है तो फिर हम तुरंत आशा से संपर्क करते हैं जो उसी गांव की होती हैं, वो आती हैं और हम उन्हें उन बच्चों के बारे में बताते हैं कि आप जाकर देखिए। फिर वो उनके घर जाती हैं, उनकी कंडीशन देखती हैं और फिर जैसा होता है वैसा वो उनको रेफर करती हैं।
1: चाहे कुछ भी हो मजबूरी,
2: चाहे कुछ भी हो मजबूरी,
1: मच्छरों से खुद को बचाना।

0: बुखार हो जाएगा।
1: और बच्चे जो स्कूल से सीख के आते हैं वो उसे सब बच्चे अपने घर पे अच्छे से पालन करें।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने

0: बताती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखे कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें।

अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुश यादव 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे हो है, भूखो है का?
2: हाँ, भूख ही लग रही होएगी।
1: तो याए सेहत दे दे।
2: हाँ, तू 2 मिनट बैठ में लेके आई।
3: मैं पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
2: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
3: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है। वाने कही ना, यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारियों से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे। खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे। स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए। तो इसलिए अपने बालक के स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक के सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
4: यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: सबको हाथ बटाना है, टीवी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीवी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीवी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनो

0: ग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अब्बा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: हाँ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: मरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.